0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

ज्योतिरधारयत् प्रजापातिष्ट्वा सादयतु पृष्ठे पृथिव्या ज्योतिष्मतीम् विश्वस्मै प्राणाय आपानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छ अग्निष्टेधि।

0: निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पम् पुनर्मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकमसत् कल्पार्थकम् भासते साक्षात्तत्तमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये तो प्रसंग चल रहा था कि कल बता रहे थे कि ये जीवात्मा अनादिकाल से अनादि माया के निद्रा में सोया हुआ है। कौड़पादाचार्य जी का ये श्लोक कारिका को इस बात को सिद्ध करने के लिए सुरेश्वराचार्य जी ने यहां उद्धृत किया कि जीवात्मा सोया हुआ है। सोए हुए होने के कारण ही ये सारे के सारे जागृत स्वप्न देख रहा है। शब्द ध्यान देना, ये जागृत स्वप्न देख रहा है। एक होता है स्वप्न का स्वप्न और दूसरा होता है जागृत का स्वप्न। इस समय हम माया के निद्रा में सोकर जागृत स्वप्न देख रहे हैं। ये तब तक इसको सत्य मानते रहेंगे जब तक इस निद्रा से हम नहीं जगेंगे। जैसे उस रात्रि की निद्रा से हम जब तक नहीं सोते हैं, उस रात्रि की निद्रा में जो स्वप्न देखते हैं स्वप्न काल में, वह स्वप्न प्रपंच सब यथार्थ ही देखते हैं। उसकी अयथार्थता तो जब हम जगते हैं तब सिद्ध होता है। जिस समय हम स्वप्न देख रहे हैं उसी समय कोई स्वाप्निक मित्र आकर हमसे पूछे कि तुम इस समय क्या कर रहे हो, तो वह सीधे हम स्वप्न अवस्था में स्वाप्निक मित्र को ये जवाब देंगे, देखते नहीं हो हम काम कर रहे हैं। जवाब देंगे कि नहीं? उस समय यही जवाब देंगे, देखते नहीं हो काम कर रहे हैं। उस समय ये हम जवाब नहीं दे पाते हैं कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। जवाब देख पाते हैं उस समय? नहीं दे पाते हैं। जगने के बाद पता चलता है कि अरे वो सब तो केवल स्वप्न था। इसी तरह अभी कोई मित्र आकर पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो हम यही जवाब देते हैं कि देखते नहीं हो हम सब काम कर रहे हैं, देखते नहीं हो प्रेमपुरी आश्रम में सत्संग सुन रहे हैं, देखते नहीं हो पूजा कर रहे हैं, देखते नहीं हो पाठ कर रहे हैं, देखते नहीं हो काम कर रहे हैं, देखते नहीं हो भजन कर रहे हैं, देखते नहीं हो बिजनेस कर रहे हैं। हम ये जवाब नहीं दे पाते हैं कि देखते नहीं हो स्वप्न देख रहे हैं। क्योंकि सभी स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में सब हो रहा है, इसलिए सभी ये कह रहे हैं कि यथार्थ है। तो ये जब तक नहीं जगाया जाएगा तब तक इसका ये स्वप्न जागृत स्वप्न टूटने वाला नहीं है। रात्रिकालीन स्वप्न तो किसी समय के बाद किन्हीं कारणों से वह टूट सकता है, क्योंकि वह थोड़ा अल्पकालिक है। यह इतना दीर्घकालिक है कि इसको अपने आप टूटने संभावना कम है। और दूसरी बात, रात्रि का जो स्वप्न आप देखते हैं वह तो इंद्रियों के उपराम जन्य स्वप्न है। दिन में आप जो काम करते हैं, थकते हैं, आपकी इंद्रियां जब विश्रांति को जाती हैं, प्रकरण सब अपने अपने गोलक के द्वारा अंतकरण में जब लय भाव को प्राप्त होते, इंद्रिय लय जन्य स्वप्न है वो। इसीलिए वह इंद्रिय की जब विश्रांति खत्म हो जाती है तो टूट जाती है, तो इंद्रियां जग जाती है, तो आपका स्वप्न टूट जाता है। आपके स्वप्न टूटने में और कोई कारण नहीं, आपकी इंद्रियां जग जाती है, विषय ग्रहण करने में प्रवृत्त हो जाती है सभी इंद्रियां, तब आपका स्वप्न टूट जाता है। अब ये जो स्वप्न देख रहे हैं वो इंद्रियों के उपराम या विश्रांति के द्वारा तो ये स्वप्न हो नहीं रहा है। कौन से स्वप्न? ये दो स्वप्नों की बात कर रहा हूं, ध्यान देना आप। एक रात्रिकालीन शयन के अवस्था में जो आप देखते हैं वह स्वप्न की बात कर रहा हूं, और दूसरा इस समय जो स्वप्न देख रहे हो इस स्वप्न की बात कर रहा हूं। आप तो बहुत सालों से प्रेमपुरी में सुनते हो, इसलिए आप मान जाओगे कि ये स्वप्न है, हम कह रहे हैं तो आप मान जाओगे। बहुत लोग नहीं मानेंगे कि ये स्वप्न है। कितने लोग मानेंगे बताइए ये स्वप्न है? है? आप लोग भी शायद अंदर से नहीं मानोगे, बाहर से मान लोगे। है? कितने लोग मानेंगे कि ये जागृत स्वप्न है? कितने लोग मानेंगे? ये तो सत्संग का संस्कारी होंगे, कई बार महात्माओं ने ये भी स्वप्न है, ये भी स्वप्न है, ये भी स्वप्न है कहते आए हैं, तो आप विश्वास कर रहे हैं कि हम महात्मा कह रहे हैं तो मान लेते हैं। लेकिन आपको भरोसा तो अभी भी नहीं है वो ये स्वप्न है। आपके हृदय से जजमेंट तो नहीं हो रहा है, भरोसे से जवाब तो नहीं दिया जा रहा है कि ये स्वप्न है, महात्मा कह रहे हैं तो मान रहे हैं। क्योंकि उस स्वप्न को तो टूटते हुए, जगते हुए, फिर बनते हुए आपने अनुभव किया है, इसलिए उसको तो आप मान लोगे। लेकिन ये स्वप्न एक दिन भी टूटता हुआ अनुभव तो हुआ नहीं, हुआ है, है? इस स्वप्न से एक दिन भी आप जगे हुए हैं, जगे हुए अवस्था की अनुभूति तो आपको हुई नहीं है। ये स्वप्न एक दिन भी टूटा हुआ अनुभव तो हो नहीं रहा है, तो आप कैसे मान लोगे कि ये स्वप्न ही है वास्तव में? महात्मा युक्ति और तर्क से जब समझाते हैं तो शायद होगा, मान रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो भी आप लोग मानेंगे और तो नहीं मानेंगे। तो ये इंद्रियों के उपराम से उत्पन्न हुआ हुआ स्वप्न नहीं है, इसीलिए माया के द्वारा प्राप्त हुआ हुआ ये स्वप्न है, इसीलिए इस स्वप्न में कोई दूसरा जगा हुआ व्यक्ति ही जगा सकेगा। वो भी स्वप्न में स्वप्न के ही व्यक्ति क्या जगाएगा? तुम भी स्वप्न देख रहे हो और मैं भी स्वप्न देख रहा हूं, तो न मैं तुम्हें जगा पाऊंगा न तुम मुझे जगा पाओगे। तुम भी सो रहे हो, स्वप्न देख रहे हो, मैं भी सो रहा हूं, स्वप्न देख रहा हूं, और मैं कुछ और स्वप्न देख रहा हूं, तुम कुछ और स्वप्न देख रहे हो, तो न तुम्हें भान है कि मुझे पड़ोसी को जगाना है, न मुझे भान है कि मुझे पड़ोसी को जगाना है, क्योंकि हम अपने अपने स्वप्न में मस्त हैं, किसको क्या भान है कि किसको जगाना है। तो स्वप्न देखने वाला व्यक्ति खुद स्वप्न देखने वाले को जगा नहीं सकता है। तो जो स्वप्न नहीं दिख रहा है, जो जग चुका है, वो व्यक्ति जगाएगा। तो कौन है हमारा जो जगाने वाला, जिसने स्वप्न नहीं देखा है? पहले देखा होगा वो जग गया है, तो कल संकेत किया था श्रुति और आचार्य। श्रुति और आचार्य ये दो जगे हुए हैं, इसीलिए खुद भी जगे हैं और को भी जगाते हैं, सभी सोए हुओं को जगाते हैं। श्रुत्याचार्य प्रसादेन, इनकी कृपा जब होनी चाहिए, जब इनकी कृपा होती है तभी अनादि माया रूपी निद्रा में सोए हुए आप और हम तमाम जीव जग पाएंगे, नहीं तो सोते रह जाएंगे। अभी तक सोए ही हैं, कब से सोए हैं ये पता नहीं है, और आगे कब तक सोएंगे ये भी पता नहीं है। हां, इतनी जरूरी है कि आपके मन में, आपके अंदर जगने की वासना थोड़ी है, तब आप कभी कभी कह देते हो, झूठा ही सही, गुरुओं से कह देते हो, महाराज थोड़ा हमको जगा देना, झूठे ही सही श्रुति को कह देते हो कि महाराज हमको जगा देना, हम अब तो जागना चाहते हैं, कब तक सोएंगे, अब तो जगना चाहते हैं। कैसे जगे? तब महात्मा प्रयत्न करते हैं कि जगने का उपाय है, हम जगाने की कोशिश करेंगे, तुम जगना चाहो तो। अंदर से यदि जगने की वासना है तो फिर जगाने की कोशिश करेंगे। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं, एक किसी शहर में दो परिवार रहते थे अड़ोस पड़ोस में, तो पड़ोस का एक व्यक्ति हमेशा अपनी पत्नी को अपने अनुकूल बनाने के लिए धमकी दिया करता था। अक्सर यही करते हैं, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, सीधी साधे अपने बात यदि मनवा नहीं सके तो धमकी देना शुरू कर देते हैं। धमकी क्या देता था कि तू मेरे अनुकूल नहीं चलेगी तो मैं सन्यासी हो जाऊंगा, साधु हो जाऊंगा, चले जाऊंगा हरिद्वार में, चुटिया काट लूंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा। तो बिचारी पत्नी डर जाती थी, तुम जो कहो मैं करूंगा, वो काम नहीं करना, मुझे छोड़कर सन्यासी नहीं बनना। तो फिर मैं ये कह रहा हूं तो क्यों नहीं मानती? अच्छा भाई मानती हूं। तो दूसरे दिन फिर वही बात, अपनी बात मनाने अपने अनुकूल नहीं हुआ तो फिर तू मेरे कहना नहीं मानती है तो मैं चला जाऊंगा, सन्यासी हो जाऊंगा, छुट्टिया काट लूंगा। फिर वो डरती थी कि ऐसा नहीं करना भाई, लोग क्या कहेंगे, मैं फिर किसके आश्रय में रहूंगी, मेरी मां क्या कहेगी, मेरे भाई क्या कहेंगे, मेरे पिता क्या कहेंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे, मेरी साथी सहेलियां क्या कहेंगी, गांव में मुख दिखाने लायक नहीं रहूंगी, तुम जो कहोगे मैं मानती हूं, चल भाई। तो जब भी देखो वो यही धमकी देवे। तो एक दिन गई वो अपने पड़ोस में, पड़ोसन को कहा कि अरे भाई क्या बताऊं, हर बात पर वो बात बात पर कह देते हैं कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा, घर छोड़कर चला जाऊंगा, कितनी मैं समझाती हूं मानते नहीं, कहते हैं। गुजराती भाषा में तुम्हारा भाई एम कहे छे, है ना, गुजराती भाषा में तो यही कहते हैं ना, तुम्हारा भाई एम कहे छे, तमे एम करो, मारा भाई ने कहजो कि एने समझावे। गुजराती समझ गए ना? મને આવડી ગઈ છે ગુજરાતી, આવડે છે નહીં? એમ કરજો કે તમારે મારા ભાઈને સમજાવો, કહે દઉં કે એમને સમજાવે। અબ જો શામ કે સમય મેં ઉસકા ભાઈ જબ આયા, જિસને કહા થા ને મેરે ભાઈ કો કહેના સમજાવે, તો ઉસ પડોસને કહા કે અરે ભાઈ તુમ સમજા દેના, આજ પડોસન આઈ થી કહે રહી થી બડા દુખી હૈ। बार बार उसका पति धमकी देता है और वो आई थी और कहा था कि भाई आपको समझाएं, आप जाकर उसको समझाओ कि ऐसा न करे। बोले क्या कहता है वो, तो बोले सन्यासी होने की बात करता है। कब से, बोले बरसों हो गया। ऐसा कोई सन्यासी बनते हैं? ऐसा कोई सन्यासी नहीं बनते। उस पत्नी ने पूछ लिया, फिर कैसा सन्यासी बनते हैं? बोले तुम्हें पता, तुम्हें जानना है कि कैसे व्यक्ति सन्यासी बनते हैं? बोले हां बताओ कैसे बनते हैं। तो वह उठा वो, जहां बैठा था वहां से उठ गया, वो खड़ा हो गया। बोले उसको प्रणाम किया कि कल तक तू मेरे बेटे की मां थी, आज से तू मेरी भी मां है। प्रणाम किया, चरण छोया और चल पड़ा, ये राम राम, अब तुम भजन करो, हम भी भजन करते हैं। चल पड़ा वो। तो ऐसे सन्यासी बनते हैं। तो बार बार कहने वाले वो तो खाली धमकाने के लिए है, वो सन्यासी बनने के लिए नहीं है। अंदर से वास्तव में सन्यासी बननी हो तो ये खाली कहते रहने से कोई सन्यासी नहीं बनने वाला है। हम भी यही काम करते हैं कि हमेशा धमकी देते हैं कि भाई जगा दो महाराज, गुरुदेव जगा दो, गुरुदेव जगा दो, बहुत सो गए, जगा दो, अब तो जगा दो है? जब भी मौका मिले कि कहते हैं कि महाराज अब तो जगा दो, अब तो जगा दो। तो महात्मा भी जानते हैं कि तुम जगने वाले तो है ही नहीं हो, खाली कहने वाले। उसकी तरह, किसकी तरह? उसकी व्यक्ति की तरह, की पत्नी के सामने खाली धमकी देता है कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। इसी तरह जगने की बात करते हो और जगने की वासना नहीं है, तीव्र इच्छा नहीं है। अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र जी ने समझाते हुए कह दिया, मुक्ति मिच्छसि चेत्ता तब विषयान विषवत् त्यजा। हे तात, हे मित्र, हे शिष्य, हे जिज्ञासु, तुम वास्तव में हृदय से मुक्ति चाहते हो। उस व्यक्ति की तरह केवल मुख से सन्यासी नहीं, हृदय से सन्यासी बनना चाहते हो, जैसे वो दूसरा व्यक्ति बन गया। हृदय से वास्तव में तुम सन्यासी बनना चाहते हो, यानी मुक्ति चाहते हो। विषयान विषवत्त्यजा, विषयों को विष से भी खतरनाक मानते हुए तुरंत परित्याग कर दो। नित्यम पीयू सबद भज, क्षमार जब दया तोष, नित्यम पीयू सबद भज। क्षमा सरलता, दया और संतोष, ये चार चीज को तुम अमृत की तरह सेवन करो। इसके अलावा जितने भी विषय हैं वो विष से भी खतरनाक हैं मानते हुए तुरंत परित्याग कर दो। और हमारी जो मुक्ति की इच्छा है वो तो उसी व्यक्ति के सन्यासी की धमकी की तरह है, कहते हैं कि मुक्त होना चाहते हैं। दया को तो सेवन करते नहीं है, और विष आंख बंद करके हंसते हुए सेवन कर रहे हैं, विषय हंसते हुए सेवन कर रहे हैं। और जहां दया की बात आती है तो व्यवहार में तो ये नहीं चलेगा स्वामी जी, विषय को तो हंसते हुए सेवन करते हैं। जब सरलता की बात आती है, ऋजुता की बात आती है, महाराज व्यवहार में तो ऐसा नहीं चलेगा। व्यवहार में तो ये हमें ये चाहिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब चाहिए, सरलता की बातें छोड़ दो, व्यवहार में नहीं चलेगा। कठोर होना पड़ता है, कठिन होना पड़ेगा। विषयों को हंसते हुए सेवन करते हैं, परंतु संतोष को सेवन करने की बात कोई भी नहीं करता है, संतोष सेवन नहीं करते। यदृच्छ लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत तो विमत्सरा, गीता में भी वही कंडीशन रख दिया है। तुम वास्तव में जगना चाहते हो, तुम वास्तव में जगना चाहते हो तो इसका सेवन करो, यदृच्छलाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमुत्सर हर्षा मर्ष, ये सबसे उद्वेग से अलग हो जाओ। महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं ये चार चीज को तुम अमृत की तरह सेवन करो, दया अर्जव संतोष क्षमा नित्यम पीयूष वद भज, तभी जो श्रुति और आचार्य जगा पाएंगे और तब हम जग पाएंगे। ईश्वर अनुग्रहाद ग्रहणापि स्वात्मबोधो यदा भवे, तीसरी बात ईश्वर की कृपा हो तब फिर हम जग पाएंगे या ईश्वर हमको जगा पाएगा। तो न सोने वाले ये तीन वस्तु हैं, तीन व्यक्ति हैं। एक तो श्रुति कभी नहीं सोती है, यदि रात को तुम्हें निद्रा न लगे और कठोपनिषद उठाकर पढ़ने लग जाओ तो कठोपनिषद ये नहीं कहेगी कि मुझे सोने दे तू नहीं सोता है, तो श्रुति कहेगी, शास्त्र कहेगा। रात को तुम्हें निद्रा नहीं लग रही हो तो तुम उठ गए और गीता पढ़ने लग गए तो गीता ये नहीं कहेगी कि तू नहीं सो रहा है तो न सो, मुझे तो सोने दे, गीता ये नहीं कहेगी। रात को एक बजे भी तुम गीता उठाकर पढ़ने लग जाओगे तो गीता अपने भाव तुम्हारे सामने रख देगी, अपना रहस्य प्रकट कर देगी। रात को उठकर रामायण पढ़ने लग जाओ, तुम्हें निद्रा नहीं लग रही है, पढ़ने लग जाओ रामायण भागवत पढ़ने लग जाओ, ये शास्त्र कभी भी ये नहीं कहेंगे तुम्हें कि मुझे सोने क्यों नहीं देता, मुझे क्यों हैरान कर रहा है। मैंने कल संकेत किया है, आचार्य शंकर कहते हैं श्रुति में आलस्यता नहीं है, शास्त्रों में आलस्यता नहीं है, प्रमादता नहीं है। तुम जब भी कुछ जानना चाहोगे और शास्त्र का आश्रय लोगे और उसका अध्ययन करने लग जाओगे, चिंतन करने लग जाओगे, विचार करने लग जाओगे शास्त्र के श्रुति के वाक्यों का, तो वह एक के बाद दूसरा रहस्य खुलते जाते हैं। शास्त्र की विशेषता है जितनी श्रद्धा से शास्त्र का जितनी बार अध्ययन करते जाओ हर बार शास्त्र तुम्हें नया रहस्य खोल देती है। जरूरत नहीं है मास्टर की, जरूरत नहीं गुरु की, जरूरत है कि तुम्हें शास्त्र के रहस्य जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। केवल अक्षर पढ़ना नहीं, अर्थ चिंतन करते हुए अपने बुद्धि की क्षमता अनुसार अपनी तरफ से अर्थ चिंतन करते हुए शास्त्र को तुम जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार शास्त्र अपना रहस्य प्रकट कर देती है। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सारी गीता का उपदेश करने के बाद गीता को किल दिया है। हाँ, दुर्गा सप्तशती पाठ करते हो ना, वहां कीलक स्तोत्र आता है, कीलक पूरी सप्तशती को कील लिया है उस कीलक के द्वारा। जब तक उस कीलक का पाठ करके उस कीले को नहीं उखाड़ोगे तब तक दुर्गा सप्तशती पाठ का फल नहीं आएगा। कीलक का अर्थ समझ रहे हैं ना, कील लिया है। पहले के जमाने में वास्तु करते थे घर की, तो घर के चारों तरफ कील दिया जाता था, घर को लोहे के कील से मंत्र पढ़ते हुए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कील दिया जाता था, एक कील गाड़ दिया जाता था और मंत्र पढ़ते हुए गाड़ दिया जाता था। उसका ये प्रतीक माना जाता था कि इस कीलन के बाद उस घर के परिधि अंदर कोई भी दुष्वासना वाले जीव का प्रवेश नहीं होगा, भूत प्रेतों का प्रवेश नहीं होगा। दुष्वासना माने वही प्रेत योनि आदि की जीवों के प्रवेश नहीं होगा, ये मान्यता मंत्रों के द्वारा कील दिया। वैसे पूरी दुर्गा सप्तशती कीलक, हाँ ये कीलक स्तोत्र आता है दुर्गा सप्तशती, वो ये कील है, गाड़ दिया गया है। उस स्तोत्र को यानी किलक को पहले पाठ करोगे, उसके बाद दुर्गा सप्तशती पाठ करोगे तो दुर्गा सप्तशती पाठ का फल आएगा, और उस किलक के पाठ किए बिना दुर्गा सप्तशती पाठ करोगे तो वह पाठ का फल नहीं आता है। इसी प्रकार के गीता के अंत 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 4 कील ठोक दी है गीता में। उन 4 कील को उखाड़ना पड़ेगा गीता पढ़कर, गीता का अर्थ प्रकट होने के लिए। जो 4 है कि ये सुनना नहीं चाहता है उसको नहीं सुनाना। न च शुश्रू सवे वाच्यम, न च माम यो अभ्यसूयति। और दूसरा कील है, पहला कील तो है कि गीता पर पूरी श्रद्धा पूर्वक निष्ठा होनी चाहिए, तभी गीता पढ़ोगे तो तुम्हारे गीता के रहस्य प्रकट होंगे तुम्हारे हृदय में, पहला कील ये। दूसरा कील यह है कि वह अभ्यसूया नहीं होनी चाहिए, न च यो अभ्यसूयति, असूया नहीं होनी चाहिए, यानी परमात्मा के प्रति शास्त्र के प्रति दोष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। असूया बुद्धि ये कील है, और जब तक असूया बुद्धि है आपके हृदय में तब तक शास्त्र अपना रहस्य प्रकट नहीं करेंगे।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Murthi Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum sunenge aur ek sant Murthiyar ki kahani. पांडे राज्य की राजधानी मदुरई में मूर्ति नाम का एक वैश्य रहता था। चिक्किलर पेरिय पुराण में इस नगरी की प्रशंसा में लिखा गया है, यह वह नगरी है जो भूमंडल को नापने वाली दिव्य तमिलवाणी की सुगंधि से परिपूर्ण है। ऐसी नगरी का यह भक्त मूर्ति समस्त सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर शिवजी के प्रति समर्पित था। भगवान शिवजी के मंदिर में चंदन घिसना उसका पारंपरिक काम था, इसी में वह प्रसन्नता उत्पन्न करता था। उन्हीं दिनों कर्नाटक के वट करुणाधर वंश के राजा ने मदुरई को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया। यह राजा जैन धर्म को मानते थे और शैव संतों को सताने तथा शैव धर्म को नष्ट करना ही उनका परम उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से उन्हें जब पता चला कि मूर्ति नायनार चंदन घिसकर भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सेवा धर्म में बाधा डालने के लिए पूरे मदुरई नगरी में चंदन की लकड़ियां मिलना दुर्लभ कर दी। इसे देखकर मूर्ति नायनार को बहुत दुख हुआ। विचार करने लगे, चंदन की लकड़ी ही तो नहीं मिलती, चंदन घिसने में काम आने वाले मेरे हाथ तो अभी शेष हैं। यह विचार कर वे अपने हाथ को ही चंदन की लकड़ी की तरह पत्थर से रगड़ने लगे। मज्जा और हड्डियां घिसने लगी, रक्त की धारा बह निकली। भक्त का कष्ट प्रभु से सहन नहीं हुआ। भगवान शिवजी प्रकट हुए और मूर्तियार को पहले की भांति स्वस्थ कर दिया। आकाशवाणी सुनाई दी, वत्स मैं तुम्हारे त्यागपूर्ण सेवा से प्रसन्न हूं, तुम इस नगरी के शासक बनोगे। मदुरई पर बलपूर्वक अधिकार कर शासक बनने वाले वटुक राजा का अचानक देहांत हो गया। नए राजा के चुनाव के लिए मंत्रियों ने परंपरा के अनुसार राजकीय हाथी को प्रातःकाल नगरी में छोड़ दिया। हाथी ने मंदिर के द्वार पर खड़े मूर्तियार को उठाकर कंधे पर बिठा लिया। सर्वसम्मति से मूर्ति नायनार को राज्यसत्ता सौंपी गई। मूर्ति नायनार ने विभूत का अभिषेक किया, रुद्राक्ष की माला को आभूषण के रूप में धारण कर लिया और राजमुकुट के स्थान पर शीश की जटाओं को सदा धारण कर लिया। अत्यंत न्यायपूर्ण और प्रभु के प्रति भक्तिभाव से युक्त होकर मूर्ति नायनार ने शासन किया। तद्युगीन मान्यता थी कि राजा के बिना राज्य, आत्मा के बिना शरीर सदृश है, तथा सैन्य बल से युक्त राजा की सशक्त भुजाओं का संरक्षण न मिले तो जगत का जीवन स्थिर नहीं हो सकता। प्रजा के संरक्षण और निष्काम सेवा भावना के कारण मूर्ति नायना को पेरी पुराण के संतों के संग्रह में विशेष सम्मान मिला है। कहा जाता है कि तत्कालीन पांड्य राज के राजाओं शैव भक्त थे। उस समय कर्नाटक और बाकी कई राजा जैन धर्म को मानते थे और उनका यह मानना था कि शैव धर्म को नष्ट करना है। इस उद्देश्य से वे शैव धर्म प्रतिष्ठित राज्यों पर आक्रमण करते थे और उनका शासन मिलने पर जैन धर्म को की स्थापना करते थे और शैव धर्म को मिटाने में लगे रहते थे। लेकिन शिव की कृपा पाने पर मूर्तियार के साथ ऐसी घटना हुई कि वह उस राज्य के राजा ही न बने बल्कि उन्होंने शिव पूजा की पारंपरिक सेवा को उस राज्य में स्थापित कर दिया। इसीलिए वह एक उच्च कोटि के नायनमार या संत हुए।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी, प्रेजेंटेड बाय आदिगुरु शंकराचार्य जी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
0: भक्त खाली केवल ध्यान करता रहेगा ऐसा नहीं, भक्त केवल पूजा ही करता रहेगा ऐसा भी नहीं, भक्त केवल प्रणाम ही करता रहेगा ऐसा नहीं। एक समय की बात है, हमारे नेपाल के कुछ भक्त लोग कहने लगे, महाराज भारत के सभी तीर्थों की यात्रा एक ही बार किया जाए तो तीर्थ यात्रा में सामूहिक रूप में निकले। तो हमने कहा ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है तो कर लेते हैं, चलो। तो एक बस रिजर्व कर ली और चल पड़े। 50 दिन की यात्रा थी वो। कितने दिन की? 50 दिन की यात्रा थी। तो रोज नई जगह जाओ, दर्शन करो, पूजा करो, नहा धो लो, फिर बस चढ़ो, फिर दूसरी जगह जाओ, धर्मशाला में रात को सो, खाओ पियो, फिर सुबह दर्शन करो, 12-1 बजे 2 बजे तक दर्शन करो, फिर उसके बाद बस चढ़ो, फिर दूसरी जगह जाओ। ये 50 दिन इस तरह घूमते रहना था। तो उस ग्रुप में एक भक्त थी, महिला थी, वह बस से उतरते ही नहा धो के पहले मंदिर दर्शन करना उसका काम था और कुछ नहीं। और प्रणाम करते करते मंदिरों में इधर प्रणाम करे उधर प्रणाम करे। अरे बाबा, मूर्ति तो उसको देखना ही नहीं है, कहीं अबीर गुलाल या चंदन लगा हुआ कोई पत्थर भी होगा ना, वो तुरंत प्रणाम करने लग जाएगी। अब सब लोग खा पी के बस में चढ़ने लगे, वो तो आई नहीं, कहां आए बोले, वो मंदिर में ही प्रणाम कर रही होगी, फिर जाओ मंदिर में खोजो। तो बोले चलो भाई सब तैयार, अभी 2-3 मंदिर और बाकी है दर्शन करने के, बोलती है। उसका तो सारा समय खाली प्रणाम में ही जाता था। तो ऐसा नहीं भाई, कीर्तन भी करो भाई, नति भी करो, नुति भी करो। स्तुति भी करो, प्रार्थना भी करो। और यदि कहीं मंदिर नहीं मिले तो फिर क्या करें महाराज? तो वैदिक सनातन धर्म बहुत ही विशाल है, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म मार के मुसलमान बनाया तो है ही नहीं। इसलिए जो फ्रीडम यहां है, जो स्वतंत्रता इस धर्म में है, और इतने एकदम सरल है, व्यक्ति को केवल भक्त होने की जरूरत है, बाकी कुछ भी कर लो स्वतंत्र। वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण में लिखा है, तुम यात्रा में हो, भगवान की पूजा कैसे करोगे? फूल तो है ही नहीं। पुष्पाणि संतु तब देव ममेन्द्रियाणि। महाराज ये मेरे इंद्रियां हैं ना दस, ये दस के दस इंद्रियां आपके लिए फूल का काम करें। फूल पुष्पाणि संतु तब देव ममेन्द्रियाणि, स्कंद पुराण का श्लोक। तो एक पूजा हो गई पुष्प, फिर धूप क्या होगा महाराज? धूपो गरुर बपुरिदम, ये जो मेरा शरीर है यही आपके लिए धूप का काम करे। 75, 80, 90 वर्ष तक ये शरीर को हम जो रख रहे हैं किसलिए? भगवान शिव की पूजा में धूप का काम लग जाए बस, समझे कि नहीं? मशान घाट में जब आग लगाया जाएगा तो भगवान शिव मशान में ही रहते हैं ना, तो रहते हैं कि नहीं? बस जिस समय हमारा बेटा आग लगा देगा, बा धूप क्या कहना, भगवान शिव मक क्या सुगंध आहा। संसारी लोगों को दुर्गंध आ सकता है, भगवान शिव तो आनंदित का अनुभव करेंगे भाई, आह क्या कहना। धूपो अगर उर बपुरिदम, इसलिए आप लोग शुक्ल यजुर्वेदी मानदंडिनी शाखा अंतर्गत रुद्री करते हो ना, रुद्री उस रुद्री में 7वां अध्याय क्या सुंदर है। लोमभ्यस्वाहा लोमभ्यस्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मागुंशेभ्य स्वाहा मज्जभ्य स्वाहा अस्थिभ्य स्वाहा स्तभ्य स्वाहा रेतसे स्वाहा। देव जी शरीर में जितने धातु हैं सबका नाम लेते हुए स्वाहा स्वाहा स्वाहा, वैदिक सनातन धर्म में यही अंत्येष्टि कर्म है, इसलिए अंत्येष्टि कर्म जरूरी है। 16 संस्कार में अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि कर्म। इसको अश्वमेध यज्ञ कहा है, क्योंकि तुम और हम अश्वमेध यज्ञ का नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास वो साधन नहीं है, हमारे पास वो साधन नहीं है कि वो अश्वमेध यज्ञ करें। तो फिर हमें अश्वमेध यज्ञ करना हो तो क्या करें? बोले ये यही असमेध यज्ञ। जीवन को इस भावना से तैयार करके रखो, उषावा अश्वस्य मृद्यस्य शिरः, वेद आरंभ यहां से होता है। ये अपने सिर को ही वो घोड़े का सिर के रूप में भावना करना है। वात प्राण चक्षुः आदि, तो वही लोमभ्य स्वहा, लोमभ्य स्वहा, शरीर में जितने भी रोम हैं वो भी उसी यज्ञ में आहुति हो, ये मंत्र पढ़ा जाता है शमशान में, शमशान क्रिया में। तो हमसे पूछते महाराज, मरने के बाद देह दान कर देना चाहिए मेडिकल को? भाई देह दान तक करो, ये लोमभ्य स्वाहा, लोमभ्य स्वाहा, त्वचे स्वाहा, त्वचे स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, मेदभ्य स्वाहा, ये कैसे होगा फिर? ये अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा फिर बोलो? हाँ, तुम्हारा ये अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा? पुष्पाणि संतु तव देव ममेन्द्रियाणि, धूपो गरुर वपुरिदम हृदय प्रदीप। पंचोपाचार पूजा होती है ना, पंचोपचार, धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन, यही पंचोपचार है। इंद्रियां पुष्प हो गए, शरीर धूप हो गया और हृदय दीप हो गया। प्राणाहविंसि करवाणि तवाक्षताश्च, अंतःकरण जो चित्त बुद्धि और अहंकार।

तो मिलना ही चाहिए। तो ये भक्तों की अवस्था, और भक्तों की दूसरी अवस्था का यहां वर्णन करते हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी। भगवान विष्णु ने जो भक्ति की है, विष्णु की हर क्रिया शिव भक्ति से भरा हुआ है, और शिव की आज्ञा से ही, शिव को प्रसन्न करने के लिए ही भगवान विष्णु का पूरा जीवन समर्पित है। इस 82वें श्लोक के द्वारा भगवान विष्णु की शिव भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। बाणत्वं वृषभत्वं अर्धवपुषा भार्यात्वमार्यापते। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य लगेगा ये कथा, ये श्लोक का अर्थ आप सुनेंगे ना, बड़ा आश्चर्य लगेगा। और बिल्कुल सत्य है ये कथा, बिल्कुल यथार्थ है वो। घोड़ित्वं सखिता मृदंग बहता चित्यादि रूपं ददौ त्वत्पादे नयनार्पणं च कृतवांस त्वद्देह भागो हरिः पूज्यात् पूज्यतर सये बहिनते ओ वा तदन्योऽधिक। हरि, भगवान विष्णु हरि, हरति पापानि इति हरि, हरति दुःखानि इति हरि। अज्ञानम तत्कार्यं च हरति इति हरि। हर हरि व्युत्पत्ति एक ही है, हरि ने, हरि ही, हरि ने, विष्णु ने आपके प्रसन्नता के लिए क्या नहीं किया। बाणत्व, आपने कहा कि तू बाण बन जा, तो भगवान विष्णु बाण बन गए। कथा मालूम है कि नहीं, त्रिपुरासुर को मारना था तो शिवजी बायक और कोई मारने में समर्थ नहीं था, विष्णु खुद त्रिपुरासुर को मारने में असमर्थ हुए, ब्रह्मा खुद त्रिपुरासुर को मारने में असमर्थ हुए, इंद्र वरुण आदि सब त्रिपुरासुर को मारने में असमर्थ हुए। अब शिव बायक और कोई भी त्रिपुरासुर को मार नहीं सकता है, और शिव भी अपने पास जो प्रसिद्ध उनके हथियार हैं, उस त्रिशूल से त्रिपुरासुर को नहीं मार सकते, क्योंकि उसने वरदान ही ऐसा मांगा था। किसी भी देवी देवताओं के हथियार जो प्रसिद्ध है, उन हथियारों से मेरी मृत्यु न हो, ले जाओ। अब विष्णु कैसे मारेंगे उसको, क्योंकि उनका प्रसिद्ध हथियार सुदर्शन चक्र है। अब विष्णु मारेंगे तो सुदर्शन चक्र से, और उससे उसकी मृत्यु न हो तो विष्णु कैसे मारेंगे उसको। और शिवजी का हथियार है त्रिशूल, उससे वो मरना नहीं। देवी का हथियार है तलवार खड़का आदि, उससे मरना नहीं। ब्रह्मा जी का हथियार ब्रह्मास्त्र है, नहीं मरेगा उससे। तो भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी से, तुमने क्या वरदान दी? बोले, मैंने तथास्तु तो कह दिया। तथास्तु तो कह दिया मैंने,

0: मैंने भी नहीं सोचा कि भाई प्रसिद्ध किसी भी देवी देवताओं के कोई भी हथियार से मेरी मृत्यु न हो, फिर उसको मारेंगे कैसे, पत्थर से वो न मरे। बोलो, भगवान ने शिव ने कहा कि ठीक है, उसने उसकी ने क्या, उसके बाप ने भी कभी नहीं सुना होगा ऐसा हथियार, हम तैयार करते हैं। महाराज कैसे, रथ चौणी अंता, मैंने स्तोत्र याद कर लो, पुष्पदंताचार्य जी ने उस चित्र को इस श्लोक में रख दिया है। रथ चौणी अंता सतधृति रगेन्द्र धनुरथो रथांगे चंद्रारकौ रथचरण पाणी सरयति दिदक्ष्योस्ति कोयम् त्रिपुरतृणमाडंबर विधिर् विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्र प्रबुधिया। रथ छोणी, पृथ्वी को रथ बना लिया। यंता सतधृति, ब्रह्मा जी को सारथी बना दिया। आज तक कहीं भी कहीं उल्लेख ही नहीं है ब्रह्मा जी सारथी बने, कृष्ण सारथी बने, ये तो समझ में आता है, ब्रह्मा सारथी बन गए, ये कहीं सुनने में आया, बना दिया। पृथ्वी रथ बनाया, ये कहीं सुनने में आया नहीं, बना दिया। समझे, रथ पाणी धनु, रथ पाणी, रथ चक्र पाणी है ना, सुदर्शन चक्र जिसके हाथ में, उसको तो धनुष बना दिया, तीर बना दिया। भगवान विष्णु को कहा कि तुम तीर बनो, सुमेरु पर्वत को धनुष बनाया, ब्रह्मा जी को सारथी, पृथ्वी को रथ, सूर्य चंद्र को रथ के पहिए, लेव जी, और विष्णु को बनाया बाण, वो खुशी से बन गए। विष्णु किसके लिए बने, तो शिव की प्रसन्नता। उन्होंने कहा कि तुम्हें बाण बनना पड़ेगा, तब हम त्रिपुरासुर को मारेंगे। बोले हम बन जाएंगे महाराज। ब्रह्मा जी को कहा तुमको सारथी बनना पड़ेगा, तब हम मारेंगे। बोले बन जाएंगे महाराज। सुमेरु पर्वत को कहा तुझे धनुष्मान बनना पड़ेगा, बन जाएंगे। तो भगवान विष्णु बाणत्वम, शिव की प्रसन्नता के लिए विष्णु बाण भी बन गए। दूसरा प्रसंग, शिव की ही प्रसन्नता के लिए, शिव की प्रसन्नता के लिए वृषभत्वम, बैल भी बन गए हैं। भगवान विष्णु बैल बन गए, वृषभत्वम। उसी प्रसंग में, उसी प्रसंग में त्रिपुरासुर के मारने का प्रसंग था ये। पृथ्वी को रथ बनाया था, सूर्य और चंद्रमा को रथ के पहिए बनाए थे, ब्रह्मा को सारथी बनाया था, सुमेरु पर्वत को धनु बनाया था, और उस पृथ्वी रूपी रथ को तां खींचने वाले घोड़े क्या थे, उस श्लोक में इसका वर्णन नहीं किया पुष्पदंताचार्य जी ने। घोड़े क्या थे, सारे वेद के ऋचाओं को, मंत्रों को घोड़ा बनाया था भगवान शिव ने, हैं? देख लो। और जब भगवान शिव ने वेद के मंत्रों को घोड़ा बनाया और युद्ध करने के लिए तत्पर होकर आगे बढ़े, तो वेद के ऋचाएं घोड़े बनकर खींचते खींचते घोड़े टिक गए, उसके घुटने टिक गए, वेद की ऋचाएं असफल हो गई, पृथ्वी रूपी रथ को तामने में, खींचने में कमजोर पड़ गए। हाँ, और कितनी ऋचाएं हैं बोलो? 1,00,000 मंत्र हैं। तो 1,00,000 घोड़े इस रथ को खींचने में असमर्थ हो गए। तो भगवान शिव ने विष्णु की तरफ इशारा किया, ये वेद रूपी घोड़े तो इस रथ को नहीं खींच पा रहे भाई। तो भगवान विष्णु ने तुरंत ये घोड़ा बन, क्या कहते हैं, बेसब बन गए। कहा कि इस रथ में नहीं तो चलो मेरे कंधे पर चढ़ो, मैं चलता हूं। तो वहीं उसी पुराण में इसका वर्णन है। तो भगवान शिव को पीठ में ढोकर भगवान विष्णु उस युद्ध में आगे बढ़े, ये भी पुराण का प्रसंग है। ये प्रसंग लिंग पुराण में आता है। तस्मिन् आरोहति रथम कल्पितम लोक संवृतम शिरोभि पतिता भूमौ तुरंगा वेद रूपिणी। वेद रूपी घोड़े गिर गए, खींच नहीं पाए। तब भगवान विष्णु ने कहा, वृषेन्द्र रूपी चौथाया, वृषभ का सर्वश्रेष्ठ वृषेन्द्र, तापया मास वही क्षण भगवान धरणी धरा। भगवान विष्णु तुरंत वृषभ का रूप धारण करके फिर उस रथ को तानने खींचने लगे। तो वो हो गया वृषभत्व। शंकराचार्य जी को तो ये पता था, इसलिए उसका संकेत कर दिया। भगवान विष्णु शिव को प्रसन्न करने के लिए बाण भी बन गए और वृषभ भी बन गए, सांड भी बन गए। अर्ध बपुसा और भगवान शिव विष्णु, भगवान शिव का आधा शरीर भी बन गए, इसलिए हरिहर हरिहर मूर्ति है, आधा शिव आधा विष्णु। यौ तौ शंख कपाल भूषित करौ मालास्थि माला धरौ। एक हाथ में शंख है, एक में कपाल है, एक गले में एक साइड में वैजयंती माला है, एक साइड में निरकर है अस्थि माला। ये भगवान शिव का हरिहर स्वरूप है। तो उसी को संकेत कर दिया। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए विष्णु ने आधा शरीर शिव को अर्पण कर दिया। उधर संकेत कर दिया कि अर्ध बपुषः। यहां तक कि भगवान शिव की पत्नी भी बन गए। कौन? देव जी भार्या तुम, ऐसे पुराण में इसका प्रसंग है। मोहिनी रूप धारण करके बच्चा पैदा किया, एक बेटा, कथा प्रसिद्ध है। जब देवासुर अमृत मंथन हुआ तब असुर लोग उस अमृत के लिए झगड़ा करने लगे, देवता झगड़ा करने लगे, भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और जाकर असुरों को सम्मोहित किया। अरे झगड़ा नहीं करो, हम तुम्हें बराबर बांट के पिला देंगे, झगड़ा मत करो। तो असुर तो तुरंत मोहिनी पर मोहित हो गए और उसके बातों पर आ गए। तुम ईमानदारी से बांटना? हां, बोले हां हां हम ईमानदारी से बांटेंगे। आज तक दुनिया में माया ने ईमानदारी से काम किया है? माया का नाम ही ईमानदारी से काम करे तो उसका नाम माया हो सकता है? कह दिया हां। लेकिन ये तो अमृत है भाई, तुम लोग आज तक तो दारू पीते रहे, मदिरा पीते रहे। भगवान विष्णु ने कहा, मोहिनी ने कहा, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रहा है। दुर्गंध आ रहा है इसका लगता है कि तुम बहुत दिनों से नहाए नहीं हो, और दुर्गंध शरीर से आ रहा हो तो दुर्गंध युक्त मदिरा पान करने में कोई आपत्ति नहीं थी। मदिरा पान करने के लिए नहाने की जरूरत नहीं है, है? अभी तक तो चलता था, लेकिन आज अमृत पान करना है। इस हालत में अमृत पान नहीं किया जा सकता है, तो क्या करें? जाओ नाक, और ख्याल ये रखना, रामदेव बाबा ने पंचगव्य साबुन बनाया वो लेके जाना। मोहनीश प्रसन्न हो गया, खूब नाना दुर्गंध सब हटाना है, और साबुन कहता तो ये नाराज हो जाता है। पंचगव्य साबुन का नाम है वो, रामदेव बाबा का बनाया हुआ साबुन का नाम रखा पंचगव्य, वो लेके जाना, बढ़िया नहा के आओ, फिर उसके बाद तुम्हें अमृत पिलाएंगे। देवता लोग असुर लोग तो गए नहाने के लिए पंचगव्य साबुन लेकर, और इधर भगवान विष्णु ने विचार किया कि यही मौका है। देवताओं को कहा कि अब समय बर्बाद मत करो, बैठ जाओ लाइन में सब फटाफट। तो सब लाइन में बैठने लगे तो राहु जो था, हम गंगा नहाने जा रहे पंचगव्य साबुन लेकर, ये लोग पंक्ति लगाने लग गए, कहीं गड़बड़ है भाई, है? तो पता नहीं किस जन्म का संस्कार जग गया हो, ये औरतों पर ज्यादा भरोसा मत करो बेटा, अपने आप को समझाने लगा, है? भरोसा मत करो ज्यादा। तो फाड़ से उसने असुर कपड़ा फेर फाड़ के बढ़िया धोती लाके तिलक तुलक लगा के आत्मानंद की तरह बैठ गया सूर्य और चंद्रमा के बीच में थाल लेकर। भगवान विष्णु को ध्यान नहीं रहा, और को भी ध्यान नहीं रहा। जब भगवान विष्णु फटाफट बांटने लगे तो उसके थाली में जब अमृत पड़ा तो अमृत पड़ते ही वो तो पान करने लग ही गया, प्रतीक्षा ही नहीं किया कि नमः पार्वती पते बोलेंगे, बोलेंगे प्रतीक्षा ही नहीं किया, आए आते ही पीने लग गया। तो सूर्य ने देखा ये तो जल्दीबाजी करने वाला असुर होता है, हैं?
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Om Namah Shivaya.

गुरुम शिव महिम्न स्तोत्र श्लोक नंबर 13 सातवें उच्चारण कीजिए यदा

गतिः यदद्धिम सुत्रामणः वरद वरद याने हे वरदान देने वाले महाप्रभु, यानी किसी को ऐसा लगे कि परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें इतना सब कुछ पहले पढ़ना पड़ेगा। ये अतद व्यावृत्ति जहत अजहत लक्षणा, ये सब हमें मालूम हो तो ही वो परमात्मा की कृपा होती है। तो बोले नहीं, ऐसा कुछ भी आपके पास नहीं हो और फिर मेरे अस्थि होने में, मेरे आस्तिक्य में आपको श्रद्धा हो तो भी काम चल जाता है। आप कैसे हैं? आप वरद हैं, आप वर देने वाले हैं। अज्ञानी को के ऊपर भी आप कृपा करने वाले हैं। तो अभी से भक्त को निश्चिंत कर दिया जाता है कि अगर ज्ञान या अज्ञान कुछ भी हो, मैं वर देने के लिए उत्सुक रहता हूँ। किसके लिए? जो मेरे अस्तित्व में, सिर्फ मेरे अस्तित्व में मानने वाला होगा तो भी वो काफी है। आप कैसे हैं? तीनों भुवनों को जिसने दासी के जैसे वश किए हुए हैं, वो बाणासुर जो है, वो बाणासुर यानी यहां असुर की बात है, दानवों की बात है, और ये बाणासुर तीनों लोग दासियों के जैसे वश करने योग्य किसके कारण बना, किसके वर से बना? तो बोले आप महादेव के वर से ही, आशीर्वाद से ही इंद्र की समृद्धि भी उसके पास तुच्छ हो गई। ऐसे बाणासुर के ऊपर भी आप कृपा करने वाले हैं। तो यहाँ कहा है कि आपकी जो समृद्धि है, न कस्याप्युन्नत्यै हि भवति शिरसः त्वयि अवनति, आपके आगे कोई भी मस्तक झुकाने वाला होगा, कोई भी जो मस्तक झुकाएगा उसकी उन्नति ही होती है। यहाँ ये जो श्लोक है, इसे शास्त्र की भाषा में अर्थवाद या स्तुति कहते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में जो बात की है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः प्रापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। तो यहाँ पाप का आचरण कौन करते हैं? तो असुर पाप का आचरण किए जाते हैं, करते देखे जाते हैं। दानव पाप का आचरण करते हैं। तो बोले हम अगर पाप का आचरण करने वाले हैं, या पहले जब अज्ञान था, जब पता नहीं था चित्त शुद्धि क्या होती है, जब हमें पता नहीं था कि राग द्वेष नहीं होने चाहिए, काम क्रोध लोभ मद मोह नहीं होने चाहिए, और तब जब हमने कर लिए वो गलत कर्म, तो अब उसका क्या होगा? मेरे जैसे को क्या आत्मज्ञान, आत्मलाभ या परमात्मा की प्राप्ति होगी या नहीं? तो यहाँ बाणासुर का दृष्टांत देते हैं कि बाणासुर यानी पापों का भी अधिपति, यानी मैक्सिमम जो पाप कर सके वो, मैक्सिमम काम कर सके, क्रोध कर सके, लोभ कर सके, मोह कर सके। ये अवधि है काम क्रोध लोभ मोह की, हम कहते हैं ना मर्यादा, हाइट ऑफ इट। तो यहाँ सब आसुरी प्रवृत्ति की जो हाइट है, जिससे आगे कोई आसुर बन ही नहीं सकता, बुरा कर ही नहीं सकता, बुरे कर्मों की अवधि जिस

के पास समाप्त हो जाती है, ऐसे बाणासुर भी जब आपके शरण में आए, आपकी आराधना की, तब आपने उन्हें तीनों विश्व का आशीर्वाद दे दिया, तीनों विश्व का अधिपति बना दिया। हे करुणेश्वर, इसीलिए महादेव को भोले और शंकर इसीलिए कहते हैं कि कोई भी हो देव या दानव, अगर दानव को भी आप इतनी समृद्धि दे सकते हैं, माफ कर सकते हैं उनके गुना, तो मैं तो आपके लिए, मैंने जो उल्लंघन किया है किसका, तो शिव निर्माल्य का जो मैंने उल्लंघन किया है, वो उल्लंघन हमेशा मेरे लिए आपके पास मुझे माफी ही मिलनी चाहिए। अब यहाँ पुष्पदंतव जी कहना क्या चाहते हैं, शिव निर्माल्य का उल्लंघन करना याने क्या, शिव निर्माल्य याने शंकर परमात्मा का नाम लिया हुआ है और वो पुष्प चढ़ा है, हम क्या कहते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, बिल्व पत्र जब हम अर्पण करते हैं तो बोले ये तीन दल है, ये मेरा स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है, ये अज्ञान शरीर है, ये तीनों अवस्थाएं हैं, ये तीनों त्रिपुटी है, हाँ, कर्म कर्ता और कर्म की जो प्रक्रिया चल रही है, ये सब कुछ जो जितनी तीन तीन से देखे, तीन से ही सब कुछ बनता है, माया का सत्व रजस और तमस ये तीन गुण है, तो जितनी ये त्रिगुणात्मिका माया से तीन तीन की त्रिपुटियां मेरे जीवन में है, वो मैं सब आपको अर्पण कर देता हूँ। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम, आप तीन नेत्र वाले हैं, तीन आयुध रखने वाले हैं, त्रिजन्म पाप संहारम, मेरे तीन, ये तीन शरीरों से जितने जितने मेरे कर्म हुए हैं वो सबका पाप का संहरण करने वाले, एक बिल्वम शिवार्पणम, ऐसे में एक बिली पत्र को अर्पण करता हूँ। अब बिली पत्र तो जड़ है, एक पत्ता है, उसके अंदर चेतनत्व कौन लाता है, जब ये शरीर मन बुद्धि का संघात जो हाथ में बिली पत्र लेता है वो उसे चेतनवंत कर रहा है और वो चढ़ा रहा है, तो बिली पत्र अगर गिर गया, बिली पत्र का उल्लंघन किया, तो वो तो जड़ एक पत्ता है, उसका उल्लंघन क्यों, इतनी माफी, इतना स्तोत्र रचना क्यों पड़ा पुष्पदंत जी को। देखिए, ये बिली पत्र का उल्लंघन करना यानी जो कोई भी परमात्मा के शरण में गया हो, परमात्मा के शरण में गया हो यानी तीनों शरीर से परमात्मा के शरण में गया हो, जिसने अपने तीनों शरीर परमात्मा को अर्पण कर दिए हैं, जिसने अपनी तीनों वासनाएं परमात्मा को अर्पण कर दी है, तीनों वासनाएं, ये त्रिदलम में तीन वासना भी आ गई कि हे परमात्मा, मेरे तीन प्रकार की जो वासना है उसको इसको भी आप, तीसरा जो आपका ज्ञान का नेत्र है उससे आप भस्मीभूत कर दीजिए, मैं आपके पास खड़ा हूँ। ये क्या आप एक्सरे करने जा रहे हैं, तो वो जो टेक्नीशियन होता है वो आपको क्या बोलते हैं कि भाई बी स्टडी, आप स्टडी रहना, वहीं खड़े रहना, भागना नहीं, सांस लेने को भी ना बोलते हैं, हाँ, सांस भी चढ़ा लेते हैं और बोलते हैं बी स्टडी, और फिर वो एक्सरे जाता है। तो यहाँ भगवान के सामने रहना है तो थोड़ा मन की चंचलता जो है, शरीर की चंचलता जो है, ये दूर तो करनी पड़ेगी ना, तो ही कोई आपका अज्ञान दूर करेगा ना, तो ये स्थूल रेस डालने के लिए भी आपको रहना पड़ता है अचंचल, तो यहाँ तो ये बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। यहाँ स्टडी रहना यानी क्या कि मन जो है वो परमात्मा में वो सूरत बनाए रखनी, लगाए रखना। बैठ तो आप ज्यादा नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा कोई एक घंटा दो घंटा बैठ सकेंगे ना, शरीर की भी अपनी एक मर्यादा है, पर मन की कोई मर्यादा नहीं है, मन को तो आपको स्थिर बनाए ही रखना है, और इसीलिए ये सत्संग श्रवण भजन कीर्तन कोई भी तरीके से, आप कोई प्रकृति को जो भी माफक आ जाए, ऐसी तरह वो परमात्मा का भाव जो है अपने भीतर बनाए रखिए। तो बोले कि हम बात कर रहे थे कि जो तीन शरीर से परमात्मा को अर्पित हो गया है, तीनों वासना परमात्मा को अर्पित हो गई है, कौन सी तीन वासना, तो बोले ऐषणा त्रय की बात करते हैं, जितने जितने विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो जितने विषय है उतनी सारी वासनाएं हैं, तो भाई इनको तीन हेडिंग में रखना है तो कैसे रखेंगे, तो बोले पुत्रेषणा, हाँ, वित्तेषणा और लोकेषणा, पुत्र की इच्छा यानी मेरा नाम रहे, संसार की इच्छा, लोकेष्णा, लोकेष्णा यानी मेरी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा होने के लिए नॉट नेसेसरी कि आपको कोई बड़ा बनना पड़ेगा, कुछ शेठ बनना पड़ेगा, जरूरी नहीं, सबको प्रतिष्ठा की भूख होती है, कोई भी
कोई छोटा सा कार्यकर होगा, उनको भी अपनी सबकी अपनी अपनी स्टेटस, अपना अपना प्रतिष्ठा तो सबको है। तो ये प्रतिष्ठा के साथ जब अहंकार जुड़ जाता है तब वो ऐष्णा बन जाता है। प्रतिष्ठा बुरी चीज नहीं है, प्रतिष्ठित तो हो, प्रतिष्ठा यानी कि हम सब प्रतिष्ठित है, ये धरा के ऊपर हम ये शरीर मन बुद्धि से प्रतिष्ठित है। कहीं कोई घर पे है, कोई बाहर है, प्रतिष्ठित तो कहीं ना कहीं तो है ही। अंत में कुछ भी आपके पास नहीं है तो परमात्मा के अंदर आप प्रतिष्ठित है पूरे के पूरे। पर मैं प्रतिष्ठित हूँ ऐसा वो प्रतिष्ठा के साथ मैं लग गया तो वो ऐष्णा बन जाती है। हा? और वित्तेष्णा, वित्तेष्णा यानी कर्म काम भोग की इच्छा, ये पंच विषय के भोग की इच्छा जो है, आसक्ति जो है, राग जो है, वो ऐष्णा की बात करते हैं। तो तीनों ऐष्णा से जो समर्पित हो गया है, तीनों त्रिपुटिया जिसके जीवन में परमात्मा को समर्पित हो गई है, उपासना, उपास्य और जो उपासक जो है, वो तीन प्रक्रिया, भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीनों प्रक्रिया से सब कुछ प्रक्रिया, कर्म कर्ता और कर्म की जो प्रोसेस होती है, कर्म का जो भोग होता है, वो तीनों त्रिपुटिया परमात्मा को जब समर्पित कोई कर देता है, हाँ, उसके लिए कुछ भी अब करना बाकी नहीं है। हाँ, नास्य कृत कृतेन, देखिए परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयात नास्य कृत कृतेन, अब किया नहीं किया वो व्यक्ति के लिए एक ही हो गया हो, ऐसा समर्पित व्यक्ति। हम अपने विषय में ही आएंगे कि ऐसा जो भी समर्पित व्यक्ति है जिसे अब कुछ नहीं करना है, कोई उपासना कोई भक्ति नहीं करनी, क्यों? क्योंकि पूरा समर्पण है। किसके साथ कोई भक्ति करेगा? भक्ति के लिए त्रिपुटी चाहिए, हाँ, दूरी चाहिए, द्वैत चाहिए। यहाँ तो समर्पण यानी क्या कि समर्पित यानी मैं ही वो हूँ, चिदानंद रूप शिव केवलोहम तदेको अवशिष्ट शिव केवल। अवशिष्ट यानी तीनों शरीर अर्पण हो गए, काया वाचा मनसा सब त्रिपुटियां अर्पण हो गई, सब वासनाएं अर्पण हो गई, और जो फिर जो बच गया वो शिव है और वो मैं हूँ। कौन बच गया आप ही बताइए मुझे, कौन बच गया? सब वासनाएं आपने दे दी, शरीर दे दिया, हाँ, शरीर यानी शरीर का जो देह भाव जो है, मैं ये शरीर हूँ ऐसा भाव आपने परमात्मा को अर्पण कर दिया। मैं ये सूक्ष्म शरीर, मैं ये मन हूँ, सुखी दुखी होने वाला हूँ, वासनाएं करने वाला हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, ऐसे जो भी विचार है वो आपने समर्पित कर दिए तो बचेगा क्या? क्योंकि शिव कौन है? तदेको अवशिष्ट शिव केवलो, हम तो कौन बच जाता है? क्योंकि आपको भी अर्पण करना है, इसीलिए तो हम इकट्ठे हुए हैं कि अर्पण क्या करना है पता नहीं है। न स्नाने न दाने न प्राणायामम शते न वा, भाई नदी में जाके शरीर अर्पण कर दिया स्नान से, वो बुरा नहीं है, चित्त शुद्धि का अवश्य साधन है पर अंतिम नहीं, दान शुद्धि का साधन है पर अंतिम नहीं, प्राणायाम साधन है पर अंतिम नहीं, तो क्या है? आत्मिक बोधे न विना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। ये शांकर वेदांत सिद्धांत का यही प्रतिष्ठा है, आत्मीय के बोधे न बिना विमुक्ति। शंकराचार्य जी ने बता दिया ये सब कुछ कीजिए ना नहीं है, पर अंतिम जो है वो आप जान लीजिए। तो तदेको अवशिष्ट, अंत क्या है? आत्मीय के बोध, आत्मा की जीव ब्रह्म क्या ऐक्य जो है वही अंतिम है, वही चिर शाश्वत शांति का कारण है। और वो कैसा है? तो शास्त्र बताता है अवशिष्ट, यानी अवशिष्ट यानी बाकी रहा हुआ। तो कौन सी प्रोसेस के बाद बाकी रहता है? आप कोई भी पांच छह चीज फैक्ट्री में डाल देते हैं, फैक्ट्री में पांच छह चीज डाल दी और एंड प्रोडक्ट बाहर आया, अब चीजें डाली है तो कुछ बाहर तो आएगा ही ना, नहीं तो कोई फैक्ट्री क्यों लगाएगा? हमारी फैक्ट्री कौन सी है? हम अर्पण करना ही सिखाते हैं, यहाँ से बोलते हैं भाई द्वैत को अर्पण कर दो, वासनाओं को अर्पण कर दो, शरीर मन बुद्धि के भाव को अर्पण कर दो, ये कर दो ये कर दो। अर्पण यानी ये परमात्मा रूपी जो बड़ी फैक्ट्री चल रही, बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, वहाँ हम अर्पण किए जाते हैं किए जाते हैं। कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाएगा, हाँ, उसमें सब मशीन सब कुछ ले आएंगे, सब कुछ अटैचमेंट करेंगे, और जो रॉ प्रोडक्ट है मटेरियल जो है वो डालेंगे, और बाहर कुछ आएगा ही नहीं, तो एंड प्रोडक्ट ही नहीं आएगा। तो बोले ये तो हास्यास्पद बात है। तो क्या हमारी बात हास्यास्पद नहीं लगती? हम समर्पण करने के लिए तैयार है, समर्पण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा? क्या कुछ नहीं, उसकी फलश्रुति कुछ नहीं?
तो बोले एंड में क्या है अवशिष्ट जो बाकी रहेगा, ये सब का अर्पण करने के बाद बाकी कौन रह जाता है, एंड रिजल्ट क्या है, मैं अवशिष्ट कौन रह जाता है, भाई मैं समर्पित करने वाला अर्पण करने वाला तो बाकी रह ही जाता हूँ। तीनों शरीर के भाव अर्पण कर लिए पर अर्पण करने वाला जो है वो तो ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। जो अर्पण करता है उसका कभी भी अभाव या बाध नहीं हो सकता, वो तो रहता ही है। आपका जो अहम है, आपका जो मैं है, बिना अहंकार का कर्ता भाव, क्योंकि कर्ता भाव दे दिया है, मैं ये शरीर हूँ वो भाव दे दिया है, फिर भी कुछ रह जाता है। अर्पण करने वाला, बाध करने वाला, निरसन करने वाला रह जाता है। यही बात विवेक चूड़ामणि में भी आती है, इसीलिए प्रकरण ग्रंथ पढ़ने ही चाहिए। वहाँ भगवान शंकराचार्य को शिष्य पूछते हैं कि हे शंकराचार्य जी, कहते हैं कि देखिए आपके पंच कोश है, अन्नमयी, प्राणमयी, मनोमयी, विज्ञानमयी, आनंदमयी, ये जो कोश है, कोश याने मैं ये हूँ, वो भाव वो आवरण कर देता है मेरी बुद्धि को, सूक्ष्म बुद्धि को, वो कोश कहलाते हैं, भाई उनको आप एक एक करके उसका तादाद में तोड़िए, निकाल लीजिए। तो शिष्य कहते हैं कि अरे भगवान, ये सब कोष का मैंने निरसन तो किया, मैंने उसका निरोध तो कर दिया, अब तो शून्य ही बचा है। तो बोले शून्य नहीं बचा है, तू तो बचा है ना बात करने वाला, वही तेरा स्वात्मा है, वही तेरा सच्चा स्वरूप है। तो हमारी बात कहाँ से निकली थी कि ऐसा जिसने समर्पण कर लिया है और उसने इतने हजारों बिली पत्र में से कोई एक समर्पण करने वाले का बिली पत्र अगर आ गया तो हमें नुकसान है। कहने का तात्पर्य, पुष्पदंत जी को इतनी माफी क्यों मांगनी पड़ी, क्योंकि हमें क्या समझना है, बिली पत्र के ऊपर से जाना, इतनी ही बात समझानी है। तो बोले नहीं, जिस व्यक्ति ने ऐसा समर्पण कर लिया है वो व्यक्ति के बारे में थोड़ा भी आपने गलत सोचा तो समझ लेना कि आप शिव निर्माल्य के ऊपर से गए हैं। क्योंकि पुष्पदंत जी क्या थे, मानसिक रूप से गए हैं ना, वो तो अंतर ध्यान हो गए थे, वो सूक्ष्म रूप से ऊपर गए थे ना। तो यानी जिसने ये कर लिया है उसके बारे में एक भी बात गलत सोच दी तो समझना आप शिव निर्माल्य के ऊपर से गए हैं। उसके लिए गलत किया तो शिव निर्माल्य के ऊपर से गए हैं। हाँ, गलत सोचा, कहने की तो बात बहुत ही दूर हो गई। इसलिए कल भी मैंने ये बात के ऊपर बहुत आपका ध्यान लाने की कोशिश की थी कि कभी भी आपको पता नहीं है कौन वहां पहुंच गया है, या कोई सिम्टम आपके ऊपर, कई लोग होंगे ज्ञानी, कई पहुंच गए होंगे, उसकी कोई निशानी नहीं है, ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, इनफैक्ट ऐसे रहते हैं कि आपको पता ही नहीं लगे कि इसको कैसे ज्ञान हो सकता है। हाँ, तो ज्ञानी जन गूढ़ गुह्य वर्तन कर रहे हैं, जो भी कोई है, नॉट नेसेसरी कि यही कपड़े में होने चाहिए, आप गृहस्थी भी हो सकते हैं, पर किसी का भी, इसीलिए किसी का भी द्वेष नहीं करना है, वो इस कारण क्योंकि वो पहुंच गया होगा, वो परमात्मा को पा लिया होगा, तो आपने मान लो कि शिव निर्माल्य का उल्लंघन किया है। इसीलिए किसी से भी राग नहीं करना है, किसी से भी द्वेष नहीं करना है, इसीलिए किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करता है। अनजाने में भी वो जो व्यक्ति है अभी अभी क्रोध कर रहा था और नेक्स्ट मोमेंट ही उसको वैराग्य आ गया और समर्पित हो गए तो हमारा क्या होगा। और इसीलिए अगर हम अपने आप को साधक कहते हैं, शिष्य कहते हैं, तो ये बात साधक को बहुत ही ध्यान रखनी जरूरी है। तो इसीलिए बाणासुर, उनको डर लग गया पुष्पदंत जी को कि भाई मैंने ये शिव निर्माल्य क्या उल्लंघन किया है, यानी ये जो राजा जो थे, काशी नरेश जो थे, वो तो साक्षात परब्रह्म का साक्षात्कार किए हुए थे और उनकी चीज को मैंने छुआ, उनकी चीज की मैंने चोरी की। ये क्या बता रहे हैं कि कभी ये ज्ञान भी जो प्राप्त करना है ना, कभी भी चोरी से प्राप्त नहीं करना ना। कोई भी आप सामने आके बैठिए, प्राप्त कीजिए, कभी भी चोरी छुपे ये प्राप्त करने की चीज नहीं है। चोरी छुपे कौन प्राप्त करता है, भाई जिसका अहंकार झुकता नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा और सामने आके बैठूं, मैं सुनूं, मेरा समाज क्या कहेगा कि ये इतना बड़ा है और उसको किसी के पास जाना पड़ता है, किसी के चरण में बैठना पड़ता है, मेरा अहंकार नहीं मानता है, तो ऐसी चोरी भी नहीं करनी है। बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म बातें श्री पुष्पदंत जी हमें बताना चाहते हैं। श्लोक नंबर 14 और 15 एक साथ।

0: ज्ञानमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिशुपाध्यः परिभवः।
1: यहाँ अभी श्लोक नंबर 14, जगत रक्षा के लिए परमात्मा ने, शिव ने जो विषपान किया है उसकी बात कर रहे हैं। ये पूरे समष्टि की बात है, ये विषपान क्या है, क्यों किया, इसकी बात थोड़ी कर रहे हैं श्री पुष्पदंत जी। हे तीन नेत्र वाले देव और दानवों ने जब समुद्र मंथन किया, तब जो जहर है, जो विष है, वो अचानक प्रकट हुआ। देखिए मंथन क्यों किया, समुद्र मंथन जब शुरू किया तब इच्छा किसकी थी कि भाई उसके भीतर जो भी संपत्ति है, समृद्धि है, सूक्ष्म और स्थूल, वो हमें प्राप्त हो। तो ये पहला ही वाक्य जो है ये हमें सिखा रहा है कि जहां आपको लगे कि संपत्ति की, समृद्धि की पॉसिबिलिटी है और हम संसार में उसी के लिए प्रवेश कर रहे हैं, तो मान लेना कि विष सबसे पहले निकलेगा ये संसार में। ये संसार का, ये संसार वृक्ष जो है, ये संसार वृक्ष का दर्शन किया हुआ है। तो हम अगर सोचते होंगे कि कुछ संसार में और जाना है, और मंथन करना है, और कुछ करना है, और कुछ डेवलपमेंट करना है, ज्यादा करना है, बढ़ाना है, तो समझ लेना विष की तैयारी रखना। ये पहले से पता होता है ना, आप संसार में जाइए, हर्ज नहीं है, पर इतना पता रखिए कि विष निकलेगा, फिर उसका तिरस्कार नहीं कीजिए। हाँ, तो ये बता रहे हैं। और नहीं जाना तो सबसे अच्छा है, और अगर प्रवेश हो ही गया है तो समझ लेना विष का आना स्वाभाविक है। उसके साथ अब सुलह करके, उसके साथ द्वेष करके या राग करके कोई भी प्रकार से उसके भीतर, उसके पीछे अपनी शक्ति का ह्रास मत करना। विष निकलना स्वाभाविक है, यानी विष की अब कंप्लेन भी मत करना, डोंट कंप्लेन, शिकायत भी मत करना। अरे भाई देखो मेरा संसार अभी ऐसा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ द्वेष किया, ये किया, वो किया, पता लग गया ना क्या है, विष निकल नहीं, और सबसे पहला निकला। हाँ, पहले ही मुंह कड़वा हो गया, पहला ही ग्रास चटनी समझ के खाया, पर करेले की या नीम की चटनी थी, क्या हुआ, हरा समझ के खाया, थाली में रखा, हरा समझ के खाया और नीम निकला पहले ही ग्रास में, तो पूरा खाना क्या है, पूरा खाना बिगड़ गया। यहाँ शिकायत अभी मत करना, संसार का मंथन किया है, विषयों का मंथन किया है, तो जहर निकलना स्वाभाविक है, शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कहा है। अभी आगे कहते हैं ब्रह्मांड का ये जो विष निकला वो पूरे ब्रह्मांड का नाश करने के लिए समर्थ था। तो संसार में जब हम बात कर रहे हैं, आप कहेंगे कि संसार के साथ आप ये विष का, विष बता रहे हैं सिंबॉलिक, तो ये कैसे हो सकता है, हमारा जो विष है वो कैसे हमारे छोटे से व्यष्टि के संसार का नाश कर सकता है। तो बोले ये विष का रूप कैसा है, विष का स्वभाव कैसा है, जान लीजिए, ये विष का स्वभाव विचार है। वी पैसे समझ लीजिए, वी यानि विष, वी यानि विचार, ये विचार बन के आ रहा है विष। कैसे विचार बन के आ गया, विचार बन के दुर्योधन के मन में आ गया, हाँ, रत्ती भर भी जगह नहीं दूंगा, ये विष आ गया, समुद्र में गए, संसार समुद्र में, और विष आ गया कि पांडवों को जगह नहीं दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी के मन में विष आ गया कि वो पद्मिनी के दर्शन करने ही है, देखना ही है, ये चाहिए। तो ये विष विचार बन के आता है, कौन से विचार बन के, जिद के विचार बन के आता है, अहंकार के विचार बन के आता है कि मुझे ये चाहिए ही, ये मुझे पाना ही चाहिए, मैं इसके लिए योग्य हूँ, और ये मुझे जब तक नहीं मिले तब तक ये विष मैं फैलाता ही रहूंगा। ये हमारा जो विचार रूपी विष है, हमारे पूरे संसार, हमारा पूरे फैमिली को, सोसाइटी को कलुषित करता रहता है। हमारा एक विचार, एक विचार आप निकाल लो तो क्या होगा, आप भी निर्विष हो जाएंगे, आप भी शुद्ध हो जाएंगे, और आपके जो आजू बाजू की जो प्रकृति है, स्थूल प्रकृति, हमारे घर की स्थूल प्रकृति भी हमारे विष से प्रभावित होती है, ये जरा ध्यान रखना। हाँ, चेतन व्यक्ति ये शरीर मन बुद्धि का संगात ही प्रभावित नहीं होता, सब कुछ प्रभावित होता है। नहीं तो पवित्र अपवित्र की बात ही हमारा शास्त्र नहीं करता, आंतर शुद्धि और बाह्य शुद्धि की बात ही नहीं करता। कोई भी जगह का बैठ जाओ, कोई भी जगह का खा लो, कुछ भी कर लो, क्यों हम ब्रह्मार्पणम कर रहे हैं? ये शुद्धि है। क्यों हम नहाते हैं? ये शुद्धि है। क्यों जगह साफ रखते हैं? शुद्धि है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कोई विश्व वाला कहां आके बैठ गया होगा, उसने क्या विचार किया होगा, सूक्ष्म रूपेण उसका जो संस्कार है यहां वहां भटकते होंगे। इसके लिए डर से सब शुद्धि के लिए भी पूरा जीवन डालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, सब में एक्सट्रीम ले लेते हैं। शुद्धि यानी कुछ मर्यादित शुद्धि रखिए और वो सब करके ये जो प्राप्त करना है, जो श्रवण है, श्रवण के लिए आपकी जगह बना लीजिए, फिर उसके पीछे ही नहीं पड़ना है। ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, एकदम ही समभाव से ये सब साधनाएं की जाती है। तो विष के बारे में अब सोच लीजिए कि विष की बात पुष्पदंत ने की, विष यानी विचार। तो अभी हम जो साधक है उसे बराबर सतर्क रहना है कि एक भी विष का विचार नहीं आए। भाई विष का विचार यानी राग का विचार, विष का विचार यानी द्वेष का विचार, काम का विचार, क्रोध का विचार, शरीर मन बुद्धि के अहम भाव का विचार जो है ये विष है, ये समझ लेना। ये विचार आए, आने के बाद पता चलता है कि विचार आ गया, अब उसके ऊपर आप कर्म नहीं कीजिए। और इसीलिए परमात्मा कृष्ण परमात्मा ने बराबर कह दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा फलेषु कदाचन की बात को वहां ही रुकवा दीजिए। हमारे लिए काम का क्या आ गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म करने में परमात्मा इतने कृपालु है कि कर्म करने में हमें स्वतंत्रता दे दी है, नहीं तो क्या होता। ये विष के विचार तो अभी भी आ रहे हैं, ये पल में भी आ गए हैं, अभी यहां बैठे बैठे भी छू गई है वो हवा, पर उसके ऊपर आपने कर्म नहीं किया। आप यहां बैठे रहे, घर जाके सोचूंगा, आप यहां बैठे रहे, तो आप यहां बैठे किस प्रकार रहे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, परमात्मा ने अधिकार दिया है कि कर्म अभी करना या नहीं करना, उठ जाऊं और विष का जो विचार हुआ उसके ऊपर ध्यान दूं या प्रवचन सुनने के बाद करूं। हाँ, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका उपयोग और दुरुपयोग हमारे हाथ में है, इसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। तो याद रखना, ये विष रूपी विचार यानी ही विष, ध्यान रखना ये विचार कौन से है। आपके विचार के साक्षी बनो, उसके दृष्टा बनो, उसको देखते रहो। और विष है, संसार है, खुद ने खड़ा किया है, तो शिकायत मत कीजिए, यू हैव नो राइट टू कंप्लेन। आगे कहते हैं कि ये तो ब्रह्मांड का नाश करने वाला है ये विष। ये मेरे मन में जो विष आया वो मैं पूरा ब्रह्मांड लेके घूम रही हूं ना, मैं याने आप सब, ये पूरा शरीर मन बुद्धि है वो क्या है, माइक्रोकॉस्म बता रहे हैं ना, इसमें आकाश वायु तेज जल पृथ्वी है क्या? हाँ या ना, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार है, हाँ। पांच तन मात्राएं है, हाँ। महत्वता है, हाँ। अहंकार है, हाँ। अहम है, हाँ। और उसे जानने वाला पुरुष है कि नहीं? हाँ। तो आप कौन हो गए, पूरा ब्रह्मांड हो गए ना। तो एक विचार पूरे ब्रह्मांड को बिगाड़ता है, इसलिए शंकर भगवान ने क्या किया, पी गए आपके विश्व वाले विचार को, पी जाना, मुख में से बाहर नहीं निकालना, यही समझना है। कोई आप्तजन के पास भी बाहर नहीं निकालना, बाहर ही नहीं निकालना है।
2: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta 15. Thank you.

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசிபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹாவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. ஃபிலாசபிக்கல் டிஸ்கோசஸ் அண்ட் பெரிய புராணம் லெக்சர்ஸ் இன் தமிழ் will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Bhakti Shakti Samita Vasal Mi Mata Vishni Mai Veno Aap Sarvan. Taittiriya Aranik Ki Taittiriya Upanishad Ke Madhyam Se शांति पाठ को लेकर के ऋषि प्रार्थना की चर्चा की जा रही है, जिसके अंतर्गत क्रम से उन देव विशेषों के जो एक एक विशिष्ट गुण हैं, उन गुणों को लेकर के ऋषि प्रार्थना करता है, हमें भी उन गुणों से संपन्न करें जिससे हमारे दुख की प्रतिबंधकों की निवृत्ति हो और हमें सुख की प्राप्ति हो, हमारा सद्मार्ग बने और निर्विघ्न पूर्वक हमारे मार्ग का मार्गन होते हुए हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, ऐसी ऋषि की अभिकांक्षा है। उसको लेकर के ही ऋषि यहां पर प्रार्थना कर रहा है। तो आप जानते हैं, प्रवचन शब्द का अर्थ ही होता है अर्थानुसंधान पूर्वक कथनम इति प्रवचनम। अर्थ का अनुसंधान करते हुए जो कहा जाता है उसी का नाम है प्रवचन। ऐसा नहीं हम जो है उस पद को न देख करके, उसके अर्थ को न देख करके जो कुछ भी कहें वह प्रवचन हो, उसे प्रवचन नहीं कहते। प्रवचन वही है जो पद के अर्थ का अनुसंधान करते हुए, उसकी खोज करते हुए और जो कहा जाता है उसी का नाम होता है प्रवचन। तो यहां पर भी वो श्रृंखला चल रही है जिसमें ऋषि प्रार्थना करते हुए संकेत किया, क्रम से जो है पहले सन्नो मित्र शब्द से कहा, फिर वरुण शब्द से कहा, फिर अर्यमा शब्द से कहा, इंद्र शब्द से चर्चा की और बृहस्पति शब्द से चर्चा की। इनका क्या अभिप्राय है? तो सीधा सा तात्पर्य है, क्योंकि उपनिषद जब प्रारंभ होने जा रही है तो सबसे पहले इसमें शिक्षावल्ली की चर्चा, और शिक्षा का मतलब होता है सीखना, और जो सीखना है वो भी क्या है? तो यहां पर शिक्षा वल्ली में उपासना विषयक चर्चा। उपासना का तात्पर्य क्या होता है? तो उपासना का तात्पर्य है अंतःकरण की शुद्धता, अर्थात जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो हमारे में पात्रता आती है, योग्यता आती है, हम अधिकारी बनते हैं, और जब अधिकारी बनते योग्यता आती है तब जो हमारे में अतृप्ति है, अपूर्ति है, उसे हम पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, तब हम उस प्रयास में सफल होते हैं, तब हमारा मार्ग मार्गित होते हुए हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो आगे जो है ब्रह्मविद आपनोति ब्रह्म पर ब्रह्म करके संकेत करेंगे, लेकिन उससे पहले शिक्षावल्ली में जाना है तो उसके लिए उपासना की आवश्यकता, और उपासना करने के लिए भी अंतःकरण की शुद्धि भी बहुत जरूरी। इसलिए उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए ही ऋषि प्रार्थना करते हुए कहता है कि पहले हमारे में वह मित्रता भाव, प्रेम भाव अर्थात ईर्षा, राग द्वेष आदि है, इनकी निवृत्ति हो, शवार आदि आए, इसलिए मित्र शब्द से चर्चा की। और उसके बाद जब ये स्थिति हमारे अंदर आ जाए तो हमें वर्ण क्या करना है, चयन क्या करना है, किस चीज को हमें चुनना है, किसे हमें अपना लक्ष्य बनाना है, कौन हमारा प्राप्तव्य है, इसको लेकर के वर्ण शब्द का संकेत किया, वो हमें सामर्थ्य दे। और क्रम से जो है अर्यमा शब्द से भी संकेत कर दिया, ये सब कब होगा तो हमारे मन के अंदर, हमारे अंतःकरण के अंदर वो सामर्थ्य हो, वो शक्ति हो अर्थात वो योग्यता हो तो वो अर्यमा प्रदान करेगा। अर्थात निश्चय करना, संकल्प में दृढ़ता होना, ये अर्यमा से गुण मांगा और उस गुण को मांग तो लिया लेकिन उसका बल हमारे अंदर है, उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर है, हम उसे टिका सकेंगे या उस पर दृढ़ रह सकेंगे नहीं, तो इसके लिए बल की याचना करते हुए इंद्र शब्द को कहा, सन्नो इंद्रा करके। और ये जब सब कर दिया, जब इतनी स्थिति हो गई तब कहने लगे अब हमें वह ज्ञान चाहिए। उस ज्ञान का अधिष्ठाता बृहस्पति को कहा, जो श्रेष्ठ ज्ञान है, कौन सा ज्ञान, तो संकेत कर दिया जो हमारे लक्ष्य को लक्षित कराने वाला है, मनुष्य जन्म को सार्थकत्व प्रदान करने वाला है, ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान को देने वाले बृहस्पति को लेकर के प्रार्थना की। और ये सब चर्चा करने के बाद तब जो है आगे संकेत किया, वो ऐसा ज्ञान कौन है जिसे प्राप्त करना, और वो भी ज्ञान हमारे में कैसे आएगा, तब उसकी तरफ संकेत किया, किसका ज्ञान करना है, तो संकेत कर दिया विष्णु रुरुक क्रम, सन्नो विष्णु रुरुक क्रम, जो सर्वव्यापक शक्ति है, जो परिपूर्ण शक्ति है, ऐसे उस परिपूर्ण शक्ति का ही हमें ज्ञान प्राप्त करना। परिपूर्ण है, व्यापक है, क्या तात्पर्य, तो इसके लिए संकेत कर दिया उरुक क्रम, जिसका एक महान क्रम है, जिसकी एक महान श्रृंखला है, महान इसलिए है कि उस श्रृंखला को कोई तोड़ सकता नहीं, उस क्रम को कोई जो है विघटित कर सकता नहीं, ऐसे क्रम वाला जो विष्णु है, जो व्यापक शक्ति है, ऐसी उस व्यापक शक्ति को ही हमें प्राप्त करना। और जब वो व्यापक शक्ति आ जाएगी तो हमारी भी जो मार्ग के मार्गन करने की श्रृंखला है वो टूटेगी नहीं, और वो टूटेगी नहीं तो मार्ग हमें कहां पहुंचाएगा, लक्ष्य तक पहुंचा देगा। और जब लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तो जिस सुख की हम याचना करते हैं वो सुख हमें प्राप्त हो जाए। एक और विलक्षण बात आती है, संसार के अंतर्गत अभी तक प्राचीन काल से लेकर के आज तक कोई ऐसा प्राणी नहीं मिला जिसने दुख की याचना की हो। सब किसकी याचना करते हैं, सुख की याचना करते हैं, और प्रयत्न भी किसका करते हैं, सुख का ही प्रयत्न करते हैं। संसार के अंतर्गत आज तक सृष्टि के आज से लेकर के किसी ने भी दुख की याचना, दुख की कामना, दुख की इच्छा नहीं की और उसके लिए प्रयत्न भी नहीं किया। सब सुख मांगते हैं और सुख के लिए प्रयत्न करते, लेकिन बड़ी विलक्षण स्थिति तो ये है, हम चाहते भी नहीं और प्रयत्न भी नहीं करते,

आत्यंतिक दुख। तो अब जो है हम दुख नहीं चाहते लेकिन फिर भी दुख आ जाता, और प्रयत्न भी नहीं करते हैं फिर भी आ जाता, ये विलक्षणता। और सुख चाहते हैं, सुख के लिए प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी हम अतृप्त रह जाते, फिर भी पूरा सुख हमें मिल पाता नहीं, जैसा हम चाहते जैसा प्रयत्न करते वैसा मिल पाता नहीं, ये विलक्षणता है। लेकिन अब इस विषय पर चर्चा न करते हुए, तो इसलिए हम जिसे नहीं चाहते और वो आ जाता है तो इसका मतलब है उसके अंदर अधिक बल है ना, वो अधिक शक्तिशाली है। तो इसलिए उस दुख की निवृत्ति के लिए हम किसी न किसी का सहारा चाहते हैं, और सहारा चाहना ही है क्या, उपासना, किसी बलवान के समीप में रहना। तो इसलिए देवताओं की उपासना, और उनके सहयोग से ही, उनकी समीपता से ही हम पूर्ण सुख को प्राप्त कर सकते। तो ऐसा पूर्ण जो होगा वही पूर्ण सुख दिलवा सकेगा, उसकी समीपता होगी। तो वो कौन है, उसी को यहां संकेत किया कि वह विष्णु जो सर्वत्र व्याप्त शक्ति है। विष्णु तो केवल संज्ञा उसे समझने के लिए दे दी, मूल में है कि जो व्याप्त शक्ति, उस व्याप्त शक्ति को ही नाना रूपों में कहा, कहीं ब्रह्म शब्द से कहा कहीं और रूप से कहा। तो यहां पर जो है समझने के लिए उसे कह दिया गया विष्णु, वो विष्णु क्या करे, वो व्यापक शक्ति क्या करे, उसका स्मरण किया। कहने लगे वो हमारे लिए सुख प्रदान करे, हमारे दुख की निवृत्ति करे, हमारे दुख का शमन करे, अर्थात हमें तृप्त करे, हमको पूर्ण करे। हमारे अंदर अभी क्या है, अपूर्णता है, तो अपूर्णता को जो है पूर्ण कर दे, हमारी अपूर्ति को है पूर्ण कर दे। तो ऐसा कौन है, तो कहने लगे जो सर्वशक्तिमान होगा, सर्वव्यापक होगा, वही कर सकेगा। तो ऐसे उस विष्णु से प्रार्थना करते, और उसकी वैशिष्टता का, हमें जिससे कुछ चाहना होता है तो क्या करते, उसकी प्रशंसा करते, क्योंकि बगैर प्रशंसा करे वो देगा नहीं। तो प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारी जो शक्ति है वो कैसी है, तुम्हारा जो स्वभाव है वो कैसा है, का सामान्य नहीं, महान गुरु, महान क्रम है, अर्थात तुम्हारे स्वभाव में कहीं भी अवरोध नहीं, महान स्वभाव है, तुम्हारे को कोई प्रतिबंधित कर सकता नहीं, तुम्हारे स्वभाव में कोई विघ्न डाल सकता नहीं, ये संकेत किया। तो अब जो है ऐसे उस विष्णु से प्रार्थना करते हुए संकेत किया कि महान है व्यवस्था जिसकी, महान है श्रृंखला क्रम जिसका। क्या व्यवस्था है, तो इसको लेके थोड़ी चर्चा प्रारंभ की थी, वेद के उस मंत्र को उठा करके, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत एक मंत्र आया, संकेत किया त्वामिमा औषधि विश्वा तुम अपो अजनयस त्वंगाह तुम आतंथोर अंतरिक्षम तुम ज्योतिषा वितमो ववर्थ। ये भी उसकी प्रशंसा है। यहां पर उसका नाम रख दिया सोम, क्या नाम रखा, सोम। अब सोम कह करके क्या कह रहे, तुम सोम रूप हो, और सोम रूप हो तो पहले तो व्यापक शक्ति कह दी, अब सोम रूप ही क्यों मात्र बतला रहे, कहा ये सोम भी अब व्यापक नहीं है, व्याप्य नहीं, ये भी क्या है, व्यापक। कहा ये व्यापक कैसे, तो इसको सुन। तब कहने लगे कि सोम होकर के तुम्ही समस्त औषधियों को, वनस्पतियों को पूरित करते हो, पुष्ट करते हो, गुणवान करते हो। और कहने लगे इतना ही नहीं, जो जल जीवन देने वाली शक्ति है, ऐसे उस जल का भी उदय तुमने ही किया, उसको भी तुमने ही उत्पन्न किया। और जो बल देने वाली गऊ है, अमृत देने वाली जो गऊ है, उसे भी तुमने ही उत्पन्न किया, उसमें भी तुम हो। सीधा सा तात्पर्य, सोम रूप से उसमें भी तुम हो, जल में भी सोम रूप से तुम हो, और औषधियों में भी सोम रूप से तुम हो। भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि कहते ही सर्वोपनिषदो गावो, भगवान ने क्या कहा पंद्रहवें अध्याय में, पुष्णामिच्चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा

0: प्रसाद, रस रूप होकर के सोम रूप से मैं ही समस्त औषधियों को पुष्ट करता। और इतना ही नहीं कहा उन्हें पुष्ट भी करता, रस भी देता हूं, और उस रस को जो ग्रहण करने वाला है उसमें उस रस का परिपाक कौन करता? तो अहम वैश्वानरो भूत्वा, है ना, संकेत कर दिया, प्राणापान समायुक्ता पचाम्य अन्नम, सारे जो चार प्रकार के अन्नों की जो चर्चा है उन सबको पचाने वाला भी मैं हूं। तो अब क्या है, कहीं उसे वैश्वानर भी कह दिया, कहीं सोम कह दिया, कहीं विष्णु कह दिया, इसका मतलब उसकी सर्वव्यापकता को बतला रहे। तो यहां पर संकेत कर रहे हैं कि गौ में भी जो है वो तुम्ही सोम रूप से उसके दुग्ध में विद्यमान हो, जल में भी तुम विद्यमान हो, वनस्पतियों में भी तुम विद्यमान हो, अर्थात तुम्हारी सत्ता है। ये संकेत किया और आगे और संकेत किया, तुम आतंथ उरु अंतरिक्षम, तुम आतंथोर वंतरिक्षम, ऐसा शब्द है, तो संधि तोड़ देंगे तो वहां हो जाएगा, तुम आतंथ उरु अंतरिक्षम, ये जो व्यापक विस्तीर्ण अंतरिक्ष है उसका भी विस्तार करने वाले आप, उस अंतरिक्ष का भी विस्तार करने वाले आप कैसे हो? तो सोम रूप से, ध्यान रखना, सोम रूप से इस अंतरिक्ष का भी विस्तार करने वाले आप। और आगे संकेत कर दिया, तुम ज्योतिषा वितमो ववर्थ, तो तुम ज्योतिषा सोम रूपी ज्योति के द्वारा तुम क्या करते हो? विशेषेण तमाह ववर्थ, जो अंधकार है, अज्ञान है, उसकी निवृत्ति करने वाले भी आप। ये संकेत, तो ऐसा विष्णु, ऐसा वह सोम, ऐसी वह सर्वव्यापक शक्ति, अब उससे प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि भाई तुम ही जो है मुझे सुख प्रदान कर सकते, तुम्हारे अंदर ही वह सामर्थ्य है, इसलिए तुम क्या है? तो कहने लगे, शन्नो विष्णुरुक्रम अस्माकम न अस्माकम, हमारे लिए है शमन करो, दुख का शमन करो और कल्याण का है प्रदान करो, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप महान शक्तिशाली हैं, आप व्यापक हैं, आपकी सर्वत्र सत्ता विद्यमान, ऐसे सोम रूप से आप सर्वत्र विद्यमान। अब थोड़ा सा विचार कर लो, ये सोम रूप कहने का ऋग्वेद के अंतर्गत तात्पर्य क्या? सोम रूप से सर्वव्यापकता बतला रहे हैं। देखो, आप गीता में भी पढ़ते हो, श्रुति भी कहती, इदा दीप्तिगतम तेजो, क्या कहा? इदा दीप्तिगतम तेजो, तो वो जो आदित्य के अंदर रहने वाला जो तेज है वो तेज कौन हो? तो मामकम विद्धि, वो मेरे को जाने, ये संकेत किया। और वही श्रुति में कहा, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो एम अग्नि, ये सब क्या, और तमेव भांतम, उसके प्रकाशित होने पर ये प्रकाशित होते। और आज के वैज्ञानिकों ने भी ये बात सिद्ध कर दी, इसलिए चर्चा की थी कि ऋषि और वैज्ञानिक शोध करता, वैज्ञानिकों ने क्या सिद्ध कर दिया, कहा जैसे पृथ्वी ग्रह है वैसे ही चंद्रमा भी क्या है? ग्रह है। लेकिन यहां से आप लोग देखते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या देखते हो कि वो अग्नि का गोला रूप है, प्रकाश कर रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा, सिद्ध किया, कहा उस चंद्रमा में प्रकाश नहीं। जब चंद्रमा में प्रकाश नहीं है तो प्रकाश प्रतीत हो रहा, ध्यान देना, बहुत समझने लायक बातें हैं ये। तो चंद्रमा में जो प्रकाश प्रतीत हो रहा है वो प्रकाश फिर कहां से आया, उसकी प्रतीति फिर कैसे? प्रत्यक्ष प्रमाण का वाद हो रहा इन शब्दों के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा, वैज्ञानिकों के शोध के द्वारा उन्होंने सिद्ध कर दिया, वहां तो जैसे पृथ्वी ग्रह पर जमीन है वैसे वहां भी जमीन है, और लोगों ने फ्लैटों की भी तैयारी कर दी वहां, है ना। तो ऐसे ही फिर कहा सूर्य भी ग्रह है, और सूर्य में भी जो प्रकाश है, कहा वो प्रकाश नहीं, लेकिन सूर्य तो हमको तपाता, और सारे के सारे वनस्पति आदि भी उससे जो है प्रपाक आदि को प्राप्त करते, उसके पाकज अपाकज तेज विलक्षण संयोग के द्वारा जो है वनस्पतियां औषधियां पकती हुई, तो फिर कैसे माना जाए? श्रुति का वाक्य भी इस बात को कहता और आज कुछ अंश तक वैज्ञानिक भी पहुंचने, तो क्या माना जाए, कैसे समझा जाए? तो संकेत किया जो भगवान ने कहा कि वह जो है तेज जो है वो मेरे को जान, और श्रुति ने भी कह दिया कि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित तो हो रहे, कैसे स्वीकार किया जाए? इसलिए ही सोम शब्द का, सोम वह गुण विशेष है जो जल के अंदर भी विद्यमान है, पृथ्वी के अंदर भी विद्यमान है, कहीं पर विशिष्ट रूप से है और कहीं पर सामान्य रूप से है, तो वह सर्वत्र यद्यपि सोम की सत्ता है लेकिन उस पदार्थ विशेष को लेकर के वैशिष्ट्य और न्यूनता आदि उसमें देखी जाती। जैसे तेल में सोम विशिष्ट है, इसलिए तेल में जब आप बत्ती डाल देते हो तो तेल क्या होता है? प्रकाश देने लगता। क्यों देता है? उसके अंदर सोम सत्ता विद्यमान, उस सोम को लेकर के ही वह। और इसी प्रकार से हम जिन औषधियों आदि को ग्रहण करते हैं उसमें भी सोम विद्यमान है, उनके खाने से जो हमारे अंदर ओज आता है वो भी उसी की सत्ता से आता है। लेकिन कहा ये तो ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा की जो बात है वो समझ में नहीं आती, तब इसके लिए संकेत किया। पृथ्वी के अंदर भी सोम है, अंतरिक्ष का भी वितान उसने किया तो उसमें भी वही सोम है क्योंकि उसकी व्यापकता, और सूर्य में भी वही सोम है, चंद्रमा में भी वही सोम है, और अंतरिक्ष में भी वही सोम, और देवलोक में भी वही सोम है, और पृथ्वी लोक में भी वही सोम। अब वैज्ञानिक क्या मानते हैं? वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं पृथ्वी रूपी ग्रह से रेजों का प्रस्फुरण होता है, ये स्वीकार करते हैं। जिसे साइंस से आप कहते हैं, साइंस के माध्यम से भी लोग शोध करते हैं कि उससे रेजों का प्रस्फुरण होता, अत्यंत सूक्ष्म कणों का प्रस्फुरण होता, और अंतरिक्ष में भी वो सोम विद्यमान तो उसमें भी वो सोम विद्यमान, और सूर्य जो है उसमें भी वो सोम विद्यमान, तो वहां पर जिन रेजों का प्रस्फुरण होता है, और आप ये भी समझ लो ये प्रस्फुरण वगैरह स्पंदनात्मिका शक्ति के संभव नहीं है। कोई भी क्रिया जो होती है वो वगैर वायु के वगैर स्पंदन के नहीं, इसलिए आगे प्रत्यक्ष ब्रह्म उसी का, लेकिन वायु भी स्वतंत्र नहीं, इसलिए श्रुति क्या कहती, तद भयात बातो पवते, उसके भय से ही क्या है वायु प्रवाहित होती। अब यहां संकेत किया तो इसका मतलब है वो सोम है, और सोम ही वायु को भी प्रेरित करता है, और वायु में स्पंदनात्मिका शक्ति दे करके वो क्या करता है, और रेजों का प्रस्फुरण करता। अब जब रेजों का प्रस्फुरण होता, उधर सूर्य से प्रस्फुरण हुआ, इधर पृथ्वी से प्रस्फुरण हुआ, और पृथ्वी की रेजें ऊपर की तरफ गई, सूर्य की रेजें नीचे की तरफ आई, और दोनों का अंतरिक्ष में मिलान हो गया, और जब रेजें परस्पर टकराई तो क्या हुआ, ज्योति प्रकट हो गई, प्रकाश प्रकट हो गया। वही प्रकाश जो है सूर्य में प्रतीत होता है, वही प्रकाश जो है चंद्रमा में प्रतीत होता है, और वही प्रकाश नक्षत्र आदियों में भी प्रकाशित होता है। दीपक आदि में तो आप जानते हैं कि आदि उसी सोम की सत्ता से होने वाला, तो इस प्रकार से ये होता। और एक मोटी बात समझ लो, पृथ्वी के अंतर्गत सोम विद्यमान है, और आप ये भी सुन चुके हो, वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया, अंग्रेजों से कहा कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण आदि की बात भी सुन चुके हो, सूर्य के अंतर्गत भी अपनी स्थिति है, तो सूर्य अपनी तरफ खींचता, पृथ्वी अपनी तरफ खींचता, मध्य में जो पहुंच जाता वो लटक जाता, ये सब बातें बतलाते, तो नक्षत्र आदि वो सब संकेत कर दिए गए। अब होता क्या है, सोम हमेशा कहां जाता, तेजस रूप है तो तेजस की तरफ जाता, सोम कहां जाता है, तेजस की तरफ जाता। जैसे आप दीपक की बत्ती को आप देखते हो, लौ को देखते हो, तो उसकी लौ किधर जाती, ऊपर की तरफ जाते, क्योंकि वो तेजस को प्राप्त करना जाता है, तेजसत्व का धर्म है, सोम का धर्म है ऊर्ध, इसलिए गीता में कहा ऊर्ध मूल, क्या कहा ऊर्ध, ऊर्ध माने उत्कृष्ट श्रेष्ठ, और वो श्रेष्ठता की तरफ ही जाता है। तो अब किसान क्या करते, पृथ्वी में भी सोम है, पृथ्वी को चीर देते हैं, पलट देते हैं, तो ऊपर जो उसका सोम से न्यून भाग होता है वो पलट गया और उसके नीचे जो सोम विद्यमान है वो प्रकट हो गया। वीर के अंतर्गत भी सोम है, फिर उसमें बीज का वपन होता है तो उस सोम के संयोग से ही बीज अंकुरित होता है, बगैर सोम शक्ति के नहीं हो सकता। और जब अंकुरित होता है तो अंकुरित होकर के बीज क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन ऊपर की तरफ क्यों जा रहा, नियम है, वह सोम जो है उस सोम की तरफ ऊर्ध्व गति की तरफ खिंचता है, और जब खिंचता है तो सोम तो ऊपर जाता है लेकिन पार्थिव अंश वहीं ठहरता जाता है, तो हमें लगता है कि पौधा बढ़ रहा है, पार्थिव अंश उसमें रुकता जाता है तो क्या लगता है, पौधा बढ़ रहा है। तो ये सब क्रिया किससे हो रही, उसी सोम शक्ति से। इसलिए ज्यो ज्यो सोम खिंचता जाता है तो वहीं पर देखते हो जहां सोम अधिक खिंच जाता है तो वहां पर सोम के खिंच जाने पर पृथ्वी में कठोरता आ जाती, और अधिक खिंचता है तो उसी से प्रस्तर आदि की रूपता आ जाती, ये सब बन जाता, सोम है वहां न्यून रूप होता जाता है और वो ऊर्ध्व की तरफ जो है जाने लगता, तो ये सारी स्थिति होती है। तो इस प्रकार से सारी फसल आदि भी उत्पन्न होती है, ये संकेत किया। और जो है सूर्य को लेकर के भी बतलाया कि उसमें प्रकाश कहां से आया, तो उसकी सोम की सत्ता से ही उसमें जो है प्रकाश आदि होता। इस प्रकार से आप देखें, और आपने देखा होगा कि कभी कभी लोहा जो है वो भी सोम की न्यूनता है लेकिन फिर भी वहां सोम, कभी कभी लोहा गलने लगता है, विशीर्ण होने लगता है, और जब लोहा गलने लगता है तो क्या होता, जो लोहा गल जाता है कचड़ा रूप बन जाता है, तो ऐसे उस गले हुए लोहे से कीड़े पैदा हो जाते, कौन पैदा हो जाते, कीड़े पैदा हो जाते। आपके शरीर में पसीना आता है और पसीना आता है और पसीना जब जम जाता है तो उसको कुछ दिनों तक स्नान नहीं करो, वस्त्र नहीं धो, तो क्या हो जाते, जू पैदा हो जाते। तो ये सारी सृष्टि का क्रम, तो ये सब किससे हो रहा, तो कहने लगे वो सोम सत्ता ही सर्वत्र व्यापक।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ஓம் சிவாய நம. சைவம் டாட் ஆர்கின் அன்பார்ந்த நேயர்களே, நீங்கள் கேட்கவிருப்பது சிவ கீர்த்தனைகள். இதில் நீங்கள் கேட்கவிருப்பது தீட்சிதர் கிருதி பாடல் மரகதலிங்கம். பாடியிருப்பவர் லக்ஷ்மி பொதுவாள் அவர்கள். வணக்கம். ஓம் சிவாய நம.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

ोपस्तविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णातु द्वाभाग एकादश च अवधूतकम् रक्षोऽवधूता अरातयोदित्यास्त्वगसि प्रतित्वा पृथिवीवेत्तु दिवस्कम्भरिरसि प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्तु धिषणासि पर्वत्या प्रतित्वा दिवस्कम्भनिर्वेत्तु धिषणासि पार्वतेयी प्रतित्वा पर्वतिर्वेत्तु देवस्त्यत्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्याम् ओष्णो हस्ताभ्यामधिवपामि धान्य

0: वरिम्ना प्राथस्व
1: ब्रह्मा जज्ञानं प्राथमं पुरस्ताद्विसीये मतस्सुरुचो वेन आवह
0: सबुध्न्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमसातश्च विवाह हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्या जातः पतिरेका आसीत् सदा धार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम द्रव्सश्च स्कन्द पृथिवीमनुद्यामिमञ्च योनिमनु

0: सूर्यस्य रश्मिषु येषामप्सु सदस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। कृणुष्व पाजः प्रसीतिन्न पृथ्वी याहि राजे वामा वाविभेन। तृष्वीमनु प्रसीतिन्द्रूणाणोऽस्ता आसि विद्या रक्षसस्तपिष्ठैः।
1: तव भ्रमासा आशुया पातन्त्यनुस्पृशधृषताशोषु चानः।
0: तपूगुष्यग्ने जुह्वा आपतङ्गा न सन्दितो विसृज विश्वा गुल्काः। प्रतिस्

रथस्वतीं रथस्व पृथिव्यासी भूरासि भूमिरस्य दीतिरसि विश्वधा आया विश्वस्य भुवानस्य धर्त्री पृथिवी यच्च पृथिवीन्द्रज्ञः पृथिवीं माहि ज्ञसीः विश्वस्मै प्राणाय आपानाय व्यानाय दानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय अग्निष्ट्वाभिपातु मह्या स्वस्त्या छर्दि।

तीरधारयत् प्रजापातिष्ट्वा सादयतु पृष्ठे पृथिव्या ज्योतिष्मती विश्वस्मै प्राणाय आपानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छ अग्निष्टे।

निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पम् पुनर्मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकमसत् कल्पार्थकम् भासते साक्षात्तत्तमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये तो प्रसंग चल रहा था कि कल बता रहे थे कि ये जीवात्मा अनादि काल से अनादि माया के निद्रा में सोया हुआ है। गौड़पादाचार्य जी का ये श्लोक कारिका को इस बात को सिद्ध करने के लिए सुरेश्वराचार्य जी ने यहां उद्धृत किया कि जीवात्मा सोया हुआ है।

0: सोए हुए होने के कारण ही ये सारे के सारे जागृत स्वप्न देख रहा है। शब्द ध्यान देना, ये जागृत स्वप्न देख रहा है। एक होता है स्वप्न का स्वप्न और दूसरा होता है जागृत का स्वप्न। इस समय हम माया के निद्रा में सोकर जागृत स्वप्न देख रहे हैं। ये तब तक इसको सत्य मानते रहेंगे जब तक इस निद्रा से हम नहीं जगेंगे। जैसे उस रात्रि की निद्रा से हम जब तक नहीं सोते हैं, उस रात्रि की निद्रा में जो स्वप्न देखते हैं स्वप्न काल में, वह स्वप्न प्रपंच सब यथार्थ ही देखते हैं। उसकी अयथार्थता तो जब हम जगते हैं तब सिद्ध होता है। जिस समय हम स्वप्न देख रहे हैं उसी समय कोई स्वाप्निक मित्र आकर हमसे पूछे कि तुम इस समय क्या कर रहे हो, तो वह सीधे हम स्वप्न अवस्था में स्वाप्निक मित्र को ये जवाब देंगे, देखते नहीं हो हम काम कर रहे हैं। जवाब देंगे कि नहीं? उस समय यही जवाब देंगे, देखते नहीं हो काम कर रहे हैं। उस समय ये हम जवाब नहीं दे पाते हैं कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। जवाब देख पाते हैं उस समय? नहीं दे पाते हैं। जगने के बाद पता चलता है कि अरे वो सब तो केवल स्वप्न था। इसी तरह अभी कोई मित्र आकर पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो हम यही जवाब देते हैं कि देखते नहीं हो हम सब काम कर रहे हैं, देखते नहीं हो प्रेमपुरी आश्रम में सत्संग सुन रहे हैं, देखते नहीं हो पूजा कर रहे हैं, देखते नहीं हो पाठ कर रहे हैं, देखते नहीं हो काम कर रहे हैं, देखते नहीं हो भजन कर रहे हैं, देखते नहीं हो बिजनेस कर रहे हैं। हम ये जवाब नहीं दे पाते हैं कि देखते नहीं हो स्वप्न देख रहे हैं, क्योंकि सभी स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में सब हो रहा है, इसलिए सभी ये कह रहे हैं कि यथार्थ है। तो ये जब तक नहीं जगाया जाएगा तब तक इसका ये स्वप्न जागृत स्वप्न टूटने वाला नहीं है। रात्रिकालीन स्वप्न तो किसी समय के बाद किन्हीं कारणों से वह टूट सकता है, क्योंकि वह थोड़ा अल्पकालिक है। यह इतना दीर्घकालिक है कि इसको अपने आप टूटने संभावना कम है। और दूसरी बात, रात्रि का जो स्वप्न आप देखते हैं वह तो इंद्रियों के उपराम जन्य स्वप्न है। दिन में आप जो काम करते हैं थकते हैं, आपकी इंद्रियां जब विश्रांति को जाती हैं, प्रकरण सब अपने अपने गोलक के द्वारा अंतकरण में जब लय भाव को प्राप्त होते, इंद्रिय लय जन्य स्वप्न है वो। इसीलिए वह इंद्रिय की जब विश्रांति खत्म हो जाती है तो टूट जाती है, तो इंद्रियां जग जाती है तो आपका स्वप्न टूट जाता है। आपके स्वप्न टूटने में और कोई कारण नहीं, आपकी इंद्रियां जग जाती है, विषय ग्रहण करने में प्रवृत्त हो जाती है सभी इंद्रियां, तब आपका स्वप्न टूट जाता है। अब ये जो स्वप्न देख रहे हैं वो इंद्रियों के उपराम या विश्रांति के द्वारा तो ये स्वप्न हो नहीं रहा है। कौन से स्वप्न? ये दो स्वप्नों की बात कर रहा हूं, ध्यान देना आप। एक रात्रिकालीन शयन के अवस्था में जो आप देखते हैं वह स्वप्न की बात कर रहा हूं, और दूसरा इस समय जो स्वप्न देख रहे हो इस स्वप्न की बात कर रहा हूं। आप तो बहुत सालों से प्रेमपुरी में सुनते हो, इसलिए आप मान जाओगे कि यह स्वप्न है, हम कह रहे हैं तो आप मान जाओगे। बहुत लोग नहीं मानेंगे कि यह स्वप्न है। कितने लोग मानेंगे बताइए यह स्वप्न है? है? आप लोग भी शायद अंदर से नहीं मानोगे, बाहर से मान लोगे, है? कितने लोग मानेंगे कि यह जागृत स्वप्न है? कितने लोग मानेंगे? ये तो सत्संग का संस्कार ही होंगे। कई बार महात्माओं ने यह भी स्वप्न है, यह भी स्वप्न है, ये भी स्वप्न है कहते आए हैं, तो आप विश्वास कर रहे हैं कि हम महात्मा कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन आपको भरोसा तो अभी भी नहीं है वो ये स्वप्न है। आपके हृदय से जजमेंट तो नहीं हो रहा है, भरोसे से जवाब तो नहीं दिया जा रहा है कि ये स्वप्न है, महात्मा कह रहे हैं तो मान रहे हैं, है? क्योंकि उस स्वप्न को तो टूटते हुए, जगते हुए, फिर बनते हुए आपने अनुभव किया है, इसलिए उसको तो आप मान लोगे। लेकिन ये स्वप्न एक दिन भी टूटता हुआ अनुभव तो हुआ नहीं, हुआ है, है? इस स्वप्न से एक दिन भी आप जगे हुए हैं, जगे हुए अवस्था की अनुभूति तो आपको हुई नहीं है। ये स्वप्न एक दिन भी टूटा हुआ अनुभव तो हो नहीं रहा है, तो आप कैसे मान लोगे कि ये स्वप्न ही है वास्तव में? महात्मा युक्ति और तर्क से जब समझाते हैं तो शायद होगा, मान रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो भी आप लोग मानेंगे और तो नहीं मानेंगे। तो ये इंद्रियों के उपराम से उत्पन्न हुआ हुआ स्वप्न नहीं है, इसीलिए माया के द्वारा प्राप्त हुआ हुआ यह स्वप्न है, इसीलिए इस स्वप्न में कोई दूसरा जगा हुआ व्यक्ति ही जगा सकेगा। वो भी स्वप्न में स्वप्न के ही व्यक्ति क्या जगाएगा? तुम भी स्वप्न देख रहे हो और मैं भी स्वप्न देख रहा हूं, तो न मैं तुम्हें जगा पाऊंगा न तुम मुझे जगा पाओगे। तुम भी सो रहे हो, स्वप्न देख रहे हो, मैं भी सो रहा हूं, स्वप्न देख रहा हूं, और मैं कुछ और स्वप्न देख रहा हूं, तुम कुछ और स्वप्न देख रहे हो, तो न तुम्हें भान है कि मुझे पड़ोसी को जगाना है, न मुझे भान है कि मुझे पड़ोसी को जगाना है, क्योंकि हम अपने अपने स्वप्न में मस्त हैं, किसको क्या भान है कि किसको जगाना है। तो स्वप्न देखने वाला व्यक्ति खुद स्वप्न देखने वाले को जगा नहीं सकता है। तो जो स्वप्न नहीं दिख रहा है, जो जग चुका है, वो व्यक्ति जगाएगा। तो कौन है हमारा जो जगाने वाला? जिसने स्वप्न नहीं देखा है, पहले देखा होगा वो जग गया है। तो कल संकेत किया था श्रुति और आचार्य, श्रुति और आचार्य ये दो जगे हुए हैं, इसीलिए खुद भी जगे हैं और को भी जगाते हैं, सभी सोए हुओं को जगाते हैं। श्रुति आचार्य प्रसादे न, इनकी कृपा जब होनी चाहिए, जब इनकी कृपा होती है, तभी अनादि माया रूपी निद्रा में सोए हुए आप और हम तमाम जीव जग पाएंगे, नहीं तो सोते रह जाएंगे। अभी तक सोए ही हैं, कब से सोए हैं ये पता नहीं है, और आगे कब तक सोएंगे ये भी पता नहीं है। हां, इतनी जरूरी है कि आपके मन में, आपके अंदर जगने की वासना थोड़ी है, तब आप कभी कभी कह देते हो, झूठा ही सही, गुरुओं से कह देते हो, महाराज थोड़ा हमको जगा देना, झूठे ही सही श्रुति को कह देते हो कि महाराज हमको जगा देना, हम अब तो जागना चाहते हैं, कब तक सोएंगे, अब तो जगना चाहते हैं, कैसे जगें? तब महात्मा प्रयत्न करते हैं कि जगने का उपाय है, हम जगाने की कोशिश करेंगे, तुम जगना चाहो तो, अंदर से यदि जगने की वासना है तो फिर जगाने की कोशिश करेंगे। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं, एक किसी शहर में दो परिवार रहते थे अड़ोस पड़ोस में, तो पड़ोस का एक व्यक्ति हमेशा अपनी पत्नी को अपने अनुकूल बनाने के लिए धमकी दिया करता था। अक्सर ये करते हैं, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, सीधी साधे अपने बात यदि मनवा नहीं सके तो धमकी देना शुरू कर देते हैं। धमकी क्या देता था कि तू मेरे अनुकूल नहीं चलेगी तो मैं सन्यासी हो जाऊंगा, साधु हो जाऊंगा, चले जाऊंगा हरिद्वार में, चुटिया काट लूंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा। तो बिचारी पत्नी डर जाती थी, तुम जो कहो मैं करूंगा, वो काम नहीं करना, मुझे छोड़कर सन्यासी नहीं बनना। तो फिर मैं ये कह रहा हूं तो क्यों नहीं मानती? अच्छा भाई मानती हूं। तो दूसरे दिन फिर वही बात, अपनी बात मनाने, अपने अनुकूल नहीं हुआ तो फिर तू मेरे कहना नहीं मानती है तो मैं चला जाऊंगा, सन्यासी हो जाऊंगा, छुट्टियां काट लूंगा। फिर वो डरती थी कि ऐसा नहीं करना भाई, लोग क्या कहेंगे, मैं फिर किसके आश्रय में रहूंगी, मेरी मां क्या कहेगी, मेरे भाई क्या कहेंगे, मेरे पिता क्या कहेंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे, मेरी साथी सहेलियां क्या कहेंगी, गांव में मुख दिखाने लायक नहीं रहूंगे, तुम जो कहोगे मैं मानती हूं, चल भाई। तो जब भी देखो वो यही धमकी दे रहे। तो एक दिन गई वो अपने पड़ोस में, पड़ोसन को कहा कि अरे भाई क्या बताऊं, हर बात पर वह बात बात पर कह देते हैं कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा, घर छोड़कर चला जाऊंगा, कितनी मैं समझाती हूं मानते नहीं, कहते हैं। गुजराती भाषा में तुम्हारा भाई एम कहे छे, है ना, गुजराती भाषा में तो यही कहते हैं ना, तुम्हारा भाई यम कहे छे, तमे यम करो, मारा भाई ने कहजो कि एने समझावे। गुजराती समझ गए ना, मने आवड़ी गई छे गुजराती, आवड़े छे नहीं, यम करजो कि तमारे मारा भाई ने समझाओ, कह दो कि एमने समझावे। अब जो शाम के समय में उसका भाई जब आया, जिसने कहा था ना कि मेरे भाई को कहना समझावे, तो उस पड़ोस ने कहा कि अरे भाई तुम समझा देना, आज पड़ोसन आई थी, कह रही थी बड़ा दुखी है, वो बार बार उसका पति धमकी देता है, और वो आई थी और कहा था कि भाई आपको समझाएं, आप जाकर उसको समझाओ कि ऐसा न करे। बोले क्या कहता है वो, तो बोले सन्यासी होने की बात करता है। कब से? बोले बरसों हो गया। ऐसा कोई सन्यासी बनते हैं? ऐसा कोई सन्यासी नहीं बनते। उस पत्नी ने पूछ लिया, फिर कैसा सन्यासी बनते हैं? बोले तुम्हें पता, तुम्हें जानना है कि कैसे व्यक्ति सन्यासी बनते हैं? बोले हां बताओ कैसे बनते हैं। तो वह उठा जहां बैठा था वहां से उठ गया, वो खड़ा हो गया। बोले उसको प्रणाम किया कि कल तक तू मेरे बेटे की मां थी, आज से तू मेरी भी मां है। प्रणाम किया, चरण छोया और चल पड़ा, ये राम राम, अब तुम भजन करो, हम भी भजन करते हैं, चल पड़ा वो। तो ऐसे सन्यासी बनते हैं। तो बार बार कहने वाले वो तो खाली धमकाने के लिए है, वो सन्यासी बनने के लिए नहीं है। अंदर से वास्तव में सन्यासी बननी हो तो ये खाली कहते रहने से कोई सन्यासी नहीं बनने वाला है। हम भी यही काम करते हैं कि हमेशा धमकी देते हैं कि भाई जगा दो महाराज, गुरुदेव जगा दो, गुरुदेव जगा दो, बहुत सो गए, जगा दो, अब तो जगा दो है? जब भी मौका मिले कि कहते हैं कि महाराज अब तो जगा दो, अब तो जगा दो। तो महात्मा भी जानते हैं कि तुम जगने वाले तो है ही नहीं हो, खाली कहने वाले हो। उसकी तरह, किसकी तरह? उसकी व्यक्ति की तरह, कि पत्नी के सामने खाली धमकी देता है कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। इसी तरह जगने की बात करते हो और जगने की वासना नहीं है, तीव्र इच्छा नहीं। अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र जी ने समझाते हुए कह दिया, मुक्ति मिच्छसि चेत्तात विषयान विषवत् त्यज। हे तात, हे मित्र, हे शिष्य, हे जिज्ञासु, तुम वास्तव में हृदय से मुक्ति चाहते हो, उस व्यक्ति की तरह केवल मुख से सन्यासी नहीं, हृदय से सन्यासी बनना चाहते हो, जैसे वो दूसरा व्यक्ति बन गया। हृदय से वास्तव में तुम सन्यासी बनना चाहते हो, यानी मुक्ति चाहते हो। विषयान विषवत् त्यज, विषयों को विष से भी खतरनाक मानते हुए तुरंत परित्याग कर दो। नित्यम पीयू सबद भजा, क्षमार जब दया तोष, नित्यम पीयू सबद भजा। क्षमा सरलता, दया और संतोष, ये चार चीज को तुम अमृत की तरह सेवन करो। इसके अलावा जितने भी विषय हैं वो विष से भी खतरनाक हैं मानते हुए तुरंत परित्याग कर दो। और हमारी जो मुक्ति की इच्छा है वो तो उसी व्यक्ति के सन्यासी की धमकी की तरह है, कहते हैं कि मुक्त होना चाहते हैं। दया को तो सेवन करते नहीं है, और विष आंख बंद करके हंसते हुए सेवन कर रहे हैं, विषय हंसते हुए सेवन कर रहे हैं। और जहां दया की बात आती है तो व्यवहार में तो ये नहीं चलेगा स्वामी जी, विषय को तो हंसते हुए सेवन करते हैं। जब सरलता की बात आती है, ऋजुता की बात आती है, महाराज व्यवहार में तो ऐसा नहीं चलेगा। व्यवहार में तो ये हमें ये चाहिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब चाहिए, सरलता की बातें छोड़ दो, व्यवहार में नहीं चलेगा। कठोर होना पड़ता है, कठिन होना पड़ेगा। विषयों को हंसते हुए सेवन करते हैं, परंतु संतोष को सेवन करने की बात कोई भी नहीं करता है, संतोष सेवन नहीं करते। यदृच्छ लाभ संतुष्ट द्वंद्वाती तो विमत्सरा, गीता में भी वही कंडीशन रख दिया है। तुम वास्तव में जगना चाहते हो, तुम वास्तव में जगना चाहते हो तो ईद का सेवन करो। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमोत्सरा, हर्षा मर्ष ये सबसे उद्वेग से अलग हो जाओ। महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं ये चार चीज को तुम अमृत की तरह सेवन करो, दया अर्जव संतोष क्षमा नित्यम पीयूष वद भज, तभी जो श्रुति और आचार्य जगा पाएंगे और तब हम जग पाएंगे। ईश्वर अनुग्रहाद ग्रहणापि स्वात्मबोधो यदा भवे, तीसरी बात ईश्वर की कृपा हो तब फिर हम जग पाएंगे या ईश्वर हमको जगा पाएगा। तो न सोने वाले ये तीन वस्तु हैं, तीन व्यक्ति हैं। एक तो श्रुति कभी नहीं सोती है, यदि रात को तुम्हें निद्रा न लगे और कठोपनिषद उठाकर पढ़ने लग जाओ तो कठोपनिषद ये नहीं कहेगी कि मुझे सोने दे तू नहीं सोता है, तो श्रुति कहेगी, शास्त्र कहेगा। रात को तुम्हें निद्रा नहीं लग रही हो तो तुम उठ गए और गीता पढ़ने लग गए तो गीता ये नहीं कहेगी कि तू नहीं सो रहा है तो न सो, मुझे तो सोने दे, गीता ये नहीं कहेगी। रात को एक बजे भी तुम गीता उठाकर पढ़ने लग जाओगे तो गीता अपने भाव तुम्हारे सामने रख देगी, अपना रहस्य प्रकट कर देगी। रात को उठकर रामायण पढ़ने लग जाओ, तुम्हें निद्रा नहीं लग रही है, पढ़ने लग जाओ रामायण भागवत पढ़ने लग जाओ, ये शास्त्र कभी भी ये नहीं कहेंगे तुम्हें कि मुझे सोने क्यों नहीं देता, मुझे क्यों हैरान कर रहा है। मैंने कल संकेत किया है, आचार्य शंकर कहते हैं श्रुति में आलस्यता नहीं है, शास्त्रों में आलस्यता नहीं है, प्रमादता नहीं है। तुम जब भी कुछ जानना चाहोगे और शास्त्र का आश्रय लोगे और उसका अध्ययन करने लग जाओगे, चिंतन करने लग जाओगे, विचार करने लग जाओगे शास्त्र के, श्रुति के वाक्यों का, तो वह एक के बाद दूसरा रहस्य खुलते जाते हैं। शास्त्र की विशेषता है जितनी श्रद्धा से शास्त्र का जितनी बार अध्ययन करते जाओ, हर बार शास्त्र तुम्हें नया रहस्य खोल देती है। जरूरत नहीं है मास्टर की, जरूरत नहीं गुरु की, जरूरत है कि तुम्हें शास्त्र के रहस्य जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। केवल अक्षर पढ़ना नहीं, अर्थ चिंतन करते हुए अपने बुद्धि की क्षमता अनुसार अपनी तरफ से अर्थ चिंतन करते हुए शास्त्र को तुम जितनी बार पढ़ने हुए पढ़ोगे उतनी बार शास्त्र अपना रहस्य प्रकट कर देती है। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सारी गीता का उपदेश करने के बाद गीता को किल दिया है। हाँ, दुर्गा सप्तशती पाठ करते हो ना, वहां कीलक स्तोत्र आता है, कीलक, पूरी सप्तशती को कील लिया है उस कीलक के द्वारा। जब तक उस कीलक का पाठ करके उस कीले को नहीं उखाड़ोगे तब तक दुर्गा सप्तशती पाठ का फल नहीं आएगा। कीलक का अर्थ समझ रहे हैं ना, कील लिया है। पहले के जमाने में वास्तु करते थे घर की, तो घर के चारों तरफ कील दिया जाता था, घर को लोहे के कील से मंत्र पढ़ते हुए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कील दिया जाता था, एक कील गाड़ दिया जाता था और मंत्र पढ़ते हुए गाड़ दिया जाता था। उसका यह प्रतीक माना जाता था कि इस कीलन के बाद उस घर के परिधि अंदर कोई भी दुष्वासना वाले जीव का प्रवेश नहीं होगा, भूत प्रेतों का प्रवेश नहीं होगा। दुष्वासना माने वही प्रेत योनि आदि की जीवों की प्रवेश नहीं होगा, ये मान्यता मंत्रों के द्वारा कील दिया। वैसे पूरी दुर्गा सप्तशती कीलक, हाँ ये कीलक स्तोत्र आता है दुर्गा सप्तशती, वो एक कील है, गाड़ दिया गया है। उस स्तोत्र को यानी कीलक को पहले पाठ करोगे, उसके बाद दुर्गा सप्तशती पाठ करोगे तो दुर्गा सप्तशती पाठ का फल आएगा, और उस कीलक के पाठ किए बिना दुर्गा सप्तशती पाठ करोगे तो वह पाठ का फल नहीं आता है। इसी प्रकार के गीता के अंत 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने चार कील ठोक दी है गीता में। उन चार कील को उखाड़ना पड़ेगा गीता पढ़कर, गीता का अर्थ प्रकट होने के लिए। जो चार है कि ये सुनना नहीं चाहता है उसको नहीं सुनाना, न च शुश्रू सवे वाच्यम, न च माम यो अभ्यसूयति। और दूसरा कील है, पहला कील तो है कि गीता पर पूरी श्रद्धा पूर्वक निष्ठा होनी चाहिए, तभी गीता पढ़ोगे तो तुम्हारे गीता के रहस्य प्रकट होंगे तुम्हारे हृदय में, पहला कील ये। दूसरा कील यह है कि वह अभ्यसूया नहीं होनी चाहिए, न च यो अभ्यसूयति, असूया नहीं होनी चाहिए, यानी परमात्मा के प्रति शास्त्र के प्रति दोष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। असूया बुद्धि एक कील है, और जब तक असूया बुद्धि है आपके हृदय में तब तक शास्त्र अपना रहस्य प्रकट नहीं करेंगे।
1: Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Murthi Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakto, अभी हम सुनेंगे और एक संत मूर्तियार की कहानी। पांडे राज्य की राजधानी मदुरई में मूर्ति नाम का एक वैश्य रहता था। चिक्किलर पेरिय पुराण में इस नगरी की प्रशंसा में लिखा गया है, यह वह नगरी है जो भूमंडल को नापने वाली दिव्य तमिलवाणी की सुगंधि से परिपूर्ण है। ऐसी नगरी का यह भक्त मूर्ति समस्त सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर शिवजी के प्रति समर्पित था। भगवान शिवजी के मंदिर में चंदन घिसना उसका पारंपरिक काम था, इसी में वह प्रसन्नता उत्पन्न करता था। उन्हीं दिनों कर्नाटक के वट करुणाधर वंश के राजा ने मदुरई को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया। यह राजा जैन धर्म को मानते थे और शैव संतों को सताने तथा शैव धर्म को नष्ट करना ही उनका परम उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से उन्हें जब पता चला कि मूर्ति नायनार चंदन खिसकर भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सेवा धर्म में बाधा डालने के लिए पूरे मदुरई नगरी में चंदन की लकड़ियां मिलना दुर्लभ कर दी। इसे देखकर मूर्ति नायनार को बहुत दुख हुआ। विचार करने लगे, चंदन की लकड़ी ही तो नहीं मिलती, चंदन घिसने में काम आने वाले मेरे हाथ तो अभी शेष हैं। यह विचार कर वे अपने हाथ को ही चंदन की लकड़ी की तरह पत्थर से रगड़ने लगे। मज्जा और हड्डियां घिसने लगी, रक्त की धारा बह निकली। भक्त का कष्ट प्रभु से सहन नहीं हुआ। भगवान शिवजी प्रकट हुए और मूर्तियार को पहले की भांति स्वस्थ कर दिया। आकाशवाणी सुनाई दी, वत्स, मैं तुम्हारे त्यागपूर्ण सेवा से प्रसन्न हूं, तुम इस नगरी के शासक बनोगे। मदुरई पर बलपूर्वक अधिकार कर शासक बनने वाले वटुक राजा का अचानक देहांत हो गया। नए राजा के चुनाव के लिए मंत्रियों ने परंपरा के अनुसार राजकीय हाथी को प्रातःकाल नगरी में छोड़ दिया। हाथी ने मंदिर के द्वार पर खड़े मूर्तियार को उठाकर कंधे पर बिठा लिया। सर्वसम्मति से मूर्ति नायनार को राज्यसत्ता सौंपी गई। मूर्ति नायनार ने विभूत का अभिषेक किया, रुद्राक्ष की माला को आभूषण के रूप में धारण कर लिया और राजमुकुट के स्थान पर शीश की जटाओं को सदा धारण कर लिया। अत्यंत न्यायपूर्ण और प्रभु के प्रति भक्तिभाव से युक्त होकर मूर्ति नायनार ने शासन किया। तद्युगीन मान्यता थी कि राजा के बिना राज्य, आत्मा के बिना शरीर सदृश है, तथा सैन्य बल से युक्त राजा की सशक्त भुजाओं का संरक्षण न मिले तो जगत का जीवन स्थिर नहीं हो सकता। प्रजा के संरक्षण और निष्काम सेवा भावना के कारण मूर्ति नायनार को पेरिय पुराण के संतों के संग्रह में विशेष सम्मान मिला है। कहा जाता है कि तत्कालीन पांडे राज के राजाओं शैव भक्त थे। उस समय कर्नाटक और बाकी कई राजा जैन धर्म को मानते थे और उनका यह मानना था कि शैव धर्म को नष्ट करना है। इस उद्देश्य से वे शैव धर्म प्रतिष्ठित राज्यों पर आक्रमण करते थे और उनका शासन मिलने पर जैन धर्म को की स्थापना करते थे और शैव धर्म को मिटाने में लगे रहते थे। लेकिन शिव की कृपा पाने पर मूर्तियार के साथ ऐसी घटना हुई कि वह उस राज्य के राजा ही न बने, बल्कि उन्होंने शिव पूजा की पारंपरिक सेवा को उस राज्य में स्थापित कर दिया। इसीलिए वह एक उच्च कोटि के नायनमा या संत हुए।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
4: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
5: भक्त खाली केवल ध्यान करता रहेगा ऐसा नहीं, भक्त केवल पूजा ही करता रहेगा ऐसा भी नहीं, भक्त केवल प्रणाम ही करता रहेगा ऐसा नहीं, एक समय की बात है, हमारे नेपाल के कुछ भक्त लोग कहने लगे, महाराज भारत के सभी तीर्थों की यात्रा एक ही बार किया जाए तो तीर्थ यात्रा में सामूहिक रूप में निकले। तो हमने कहा ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है तो कर लेते हैं, चलो। तो एक बस रिजर्व कर ली और चल पड़े। 50 दिन की यात्रा थी वो। कितने दिन की? 50 दिन की यात्रा थी। तो रोज नई जगह जाओ, दर्शन करो, पूजा करो, नहा धो लो, फिर बस चढ़ो, फिर दूसरी जगह जाओ, धर्मशाला में रात को सो, खाओ पियो, फिर सुबह दर्शन करो, 12-1 बजे 2 बजे तक दर्शन करो, फिर उसके बाद बस चढ़ो, फिर दूसरी जगह जाओ। ये 50 दिन इस तरह घूमते रहना था। तो उस ग्रुप में एक भक्त थी, महिला थी, वह बस से उतरते ही नहा धो के पहले मंदिर दर्शन करना उसका काम था, और कुछ नहीं। और प्रणाम करते करते मंदिरों में इधर प्रणाम करे, उधर प्रणाम करे, इधर प्रणाम करे, उधर प्रणाम करे, अरे बाबा, मूर्ति तो उसको देखना ही नहीं है। कहीं अबीर, गुलाल या चंदन लगा हुआ कोई पत्थर भी होगा ना, वो तुरंत प्रणाम करने लग जाएगी। अब सब लोग खा पी के बस में चढ़ने लगे, वो तो आई नहीं, कहां आए, बोले वो मंदिर में ही प्रणाम कर रही होगी, फिर जाओ मंदिर में खोजो। तो बोले चलो भाई सब तैयार, अभी 2-3 मंदिर और बाकी है दर्शन करने के, बोलती है। उसका तो सारा समय खाली प्रणाम में ही जाता था। तो ऐसा नहीं भाई, कीर्तन भी करो भाई, नति भी करो, नुति भी करो, स्तुति भी करो, प्रार्थना भी करो, और यदि कहीं मंदिर नहीं मिले तो फिर क्या करें महाराज। तो वैदिक सनातन धर्म बहुत ही विशाल है, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म मार के मुसलमान बनाया तो है ही नहीं। इसलिए जो फ्रीडम यहां है, जो स्वतंत्रता इस धर्म में है, और इतने एकदम सरल है, व्यक्ति को केवल भक्त होने की जरूरत है, बाकी कुछ भी कर लो स्वतंत्र। वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण में लिखा है, तुम यात्रा में हो, भगवान की पूजा कैसे करोगे? फूल तो है ही नहीं। पुष्पाणि संतु तब देव ममेन्द्रियाणि। महाराज ये मेरे इंद्रियां हैं ना 10, ये 10 के 10 इंद्रियां आपके लिए फूल का काम करें। फूल पुष्पाणि संतु तव देव ममेन्द्रियाणि, स्कंद पुराण का सुनो। तो एक पूजा हो गई पुष्प, फिर धूप क्या होगा महाराज? धूपो गरुर बपुरिदम, ये जो मेरा शरीर है यही आपके लिए धूप का काम करे। 75-80-90 वर्ष तक ये शरीर को हम जो रख रहे हैं किस लिए? भगवान शिव की पूजा में धूप का काम लग जाए बस। समझे कि नहीं? मशान घाट में जब आग लगाया जाएगा तो भगवान शिव मशान में ही रहते हैं ना, तो रहते हैं कि नहीं? बस जिस समय हमारा बेटा आग लगा देगा, बाद धूप क्या कहना, भगवान शिव मक्ख पड़े, क्या सुगंध आहा। संसारी लोगों को दुर्गंध आ सकता है, भगवान शिव तो आनंदित का अनुभव करेंगे भाई, आह क्या कहना। धूपो अगर उर बपुरीदम, इसलिए आप लोग शुक्ल यजुर्वेदी मानदंडिनी शाखा अंतर्गत रुद्री करते हो ना, रुद्री, उस रुद्री में सातवां अध्याय क्या सुंदर है। लोमभ्यस्वाहा लोमभ्यस्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मागुंसेभ्य स्वाहा मज्जभ्य स्वाहा अस्थिभ्य स्वाहा स्तभ्य स्वाहा रेतसे स्वाहा। देव जी, शरीर में जितने धातु हैं सबका नाम लेते हुए स्वाहा स्वाहा स्वाहा, वैदिक सनातन धर्म में यही अंत्येष्टि कर्म है, इसलिए अंत्येष्टि कर्म जरूरी है। 16 संस्कार में अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि कर्म। इसको अश्वमेध यज्ञ कहा है क्योंकि तुम और हम अश्वमेध यज्ञ का नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास वो साधन नहीं है, हमारे पास वो साधन नहीं है कि वो अश्वमेध यज्ञ करें। तो फिर हमें अश्वमेध यज्ञ करना हो तो क्या करें? बोले ये यही अश्वमेध यज्ञ, जीवन को इस भावना से तैयार करके रखो, उषावा अश्वस्य मृद्यस्य शिरः, वेद आरंभ यहां से होता है। ये अपने सिर को ही वो घोड़े का सिर के रूप में भावना करना है। वात प्राण चक्षुः आदि, तो वही लोमभ्यस्वहा लोमभ्यस्वहा, शरीर में जितने भी रोम हैं वो भी उसी यज्ञ में आहुति हो, ये मंत्र पढ़ा जाता है शमशान में, शमशान क्रिया में। तो हमसे पूछते महाराज, मरने के बाद देह दान कर देना चाहिए मेडिकल को? भाई देह दान तो करो, ये लोमभ्य स्वाहा लोमभ्य स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदभ्य स्वाहा, ये कैसे होगा फिर? ये अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा फिर बोलो? तुम्हारा ये अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा? पुष्पाणि संतु तव देव ममेन्द्रियाणि धूपो गरुर बपुरिदम हृदयम प्रदीप। पंचोपाचार पूजा होती है ना, पंचोपचार, धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन, ये पंचोपचार है। इंद्रियां पुष्प हो गए, शरीर धूप हो गया और हृदय दीप हो गया। प्राणाहविंसि करवाणि तवाक्षताश्च, अंतकरण जो चित्त बुद्धि और अहंकार है वही तवा अक्षता आपके लिए अक्षता हो, या फिर पांच ज्ञान इंद्रियां पुष्प हो तो पांच कर्म इंद्रियां अक्षता हो। प्राणा हविष्य, ये जो प्राण है यही आपके लिए नैवेद्य हो। पूजा फलम व्रजतु सम्प्रतमेश जीवः। महाराज इस प्रकार से ये जीवात्मा आपकी पूजा करेगा तो उसको इस पूजा का फल तो मिलना ही चाहिए। तो यह भक्तों की अवस्था, और भक्तों की दूसरी अवस्था का यहां वर्णन करते हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी। भगवान विष्णु ने जो भक्ति की है, विष्णु की हर क्रिया शिव भक्ति से भरा हुआ है, और शिव की आज्ञा से ही शिव को प्रसन्न करने के लिए ही भगवान विष्णु का पूरा जीवन समर्पित है। इस 82वें श्लोक के द्वारा भगवान विष्णु की शिव भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। बाणत्वं वृषभत्वं अर्धवपुषा भार्यात्वमार्यापते। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य लगेगा ये कथा, ये श्लोक का अर्थ आप सुनेंगे ना बड़ा आश्चर्य लगेगा, और बिल्कुल सत्य है ये कथा, बिल्कुल यथार्थ है वो। घोड़ित्वं सखिता मृदंग बहता चित्यादि रूपम ददौ त्वत्पादे नयनार्पणम च कृतवांस त्वद्देह भागो हरिः पूज्यात् पूज्यतर सये वहिनते ओ वा तदन्यो अधिक। हरि, भगवान विष्णु हरि, हरति पापानि इति हरि, हरति दुःखानि इति हरि, अज्ञानं तत्कार्यं च हरति इति हरि। हर हरि व्युत्पत्ति एक ही है, हरि ने, हरि ही, हरि ने, विष्णु ने आपके प्रसन्नता के लिए क्या नहीं किया। बाणत्व, आपने कहा कि तू बाण बन जा तो भगवान विष्णु बाण बन गए। कथा मालूम है कि नहीं, त्रिपुरासुर को मारना था तो शिवजी बायक और कोई मारने में समर्थ नहीं था, विष्णु खुद त्रिपुरासुर को मारने में असमर्थ हुए, ब्रह्मा खुद त्रिपुरासुर को मारने में असमर्थ हुए, इंद्र वरुण आदि सब त्रिपुरासुर को मारने में असमर्थ हुए। अब शिव बायक और कोई भी त्रिपुरासुर को मार नहीं सकता है, और शिव भी अपने पास जो प्रसिद्ध उनके हथियार हैं उस त्रिशूल से त्रिपुरासुर को नहीं मार सकते, क्योंकि उसने वरदान ही ऐसा मांगा था। किसी भी देवी देवताओं के हथियार जो प्रसिद्ध है उन हथियारों से मेरी मृत्यु न हो, ले जाओ। अब विष्णु कैसे मारेंगे उसको, क्योंकि उनका प्रसिद्ध हथियार सुदर्शन चक्र है, अब विष्णु मारेंगे तो सुदर्शन चक्र से, और उससे उसकी मृत्यु ना हो तो विष्णु कैसे मारेंगे उसको। और शिवजी का हथियार है त्रिशूल, उससे वो मरना नहीं। देवी का हथियार है तलवार खड़का आदि, उससे मरना नहीं। ब्रह्मा जी का हथियार ब्रह्मास्त्र है, नहीं मरेगा उससे। तो भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी से, तुमने क्या वरदान दी? बोले मैंने तथास्तु तो कह दिया। तथास्तु तो कह दिया मैंने, लेकिन मैंने भी नहीं सोचा कि भाई प्रसिद्ध किसी भी देवी देवताओं के कोई भी हथियार से मेरी मृत्यु न हो, फिर उसको मारेंगे कैसे? पत्थर से वो न मरे, बोलो। भगवान ने शिव ने कहा कि ठीक है, उसने उसकी ने क्या, उसके बाप ने भी कभी नहीं सुना होगा ऐसा हथियार, हम तैयार करते हैं। महाराज कैसे? रथ च्यवणी अंता, मैं मैंने स्तोत्र याद कर लो, पुष्पदंताचार्य जी ने उस चित्र को इस श्लोक में रख दिया है। रथ च्यवणी अंता

0: तो असुर तो तुरंत मोहिनी पर मोहित हो गए और उसके बातों पर आ गए। तुम ईमानदारी से बांटना? हां, बोले हां हां हम ईमानदारी से बांटेंगे। आज तक दुनिया में माया ने ईमानदारी से काम किया है। माया का नाम ही ईमानदारी से काम करे तो उसका नाम माया हो सकता है? कह दिया हां। लेकिन ये तो अमृत है भाई, तुम लोग आज तक तो दारू पीते रहे, मदिरा पीते रहे। भगवान विष्णु ने कहा, मोहिनी ने कहा, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रहा है। दुर्गंध आ रहा है इसका लगता है कि तुम बहुत दिनों से नहाए नहीं हो, और दुर्गंध शरीर से आ रहा हो तो दुर्गंध युक्त मदिरा पान करने में कोई आपत्ति नहीं थी। मदिरा पान करने के लिए नहाने की जरूरत नहीं है, है? अभी तक तो चलता था, लेकिन आज अमृत पान करना है। इस हालत में अमृत पान नहीं किया जा सकता है, तो क्या करें? जाओ नहा के, और ख्याल ये रखना, रामदेव बाबा ने पंचगव्य साबुन बनाया वो लेके जाना। मनीष प्रसन्न हो गया, खूब नहाना, दुर्गंध सब हटाना है? और साबुन कहता तो ये नाराज हो जाता फिर। पंचगव्य साबुन का नाम है वो, रामदेव बाबा का बनाया हुआ साबुन का नाम रखा पंचगव्य। वो लेके जाना, बढ़िया नहा के आओ, फिर उसके बाद तुम्हें अमृत पिलाएंगे। देवता लोग असुर लोग तो गए नहाने के लिए पंचगव्य साबुन लेकर, हाँ। और इधर भगवान विष्णु ने विचार किया कि यही मौका है। देवताओं को कहा कि अब समय बर्बाद मत करो, बैठ जाओ लाइन में सब फटाफट। तो सब लाइन में बैठने लगे तो राहु जो था, हम गंगा नहाने जा रहे पंचगव्य साबुन लेकर, ये लोग पंक्ति लगाने लग गए, कहीं गड़बड़ है भाई, है? तो पता नहीं किस जन्म का संस्कार जग गया हो, ये औरतों पर ज्यादा भरोसा मत करो बेटा, अपने आप को समझाने लगा, है? भरोसा मत करो ज्यादा। तो फाड़ से उसने असुर कपड़ा फेर फार के बढ़िया धोती लाके तिलक तुलक लगा के आत्मानंद की तरह बैठ गया सूर्य और चंद्रमा के बीच में थाल लेकर। भगवान विष्णु को ध्यान नहीं रहा, और को भी ध्यान नहीं रहा। जब भगवान विष्णु फटाफट बांटने लगे तो उसके थाली में जब अमृत पड़ा तो अमृत पड़ते ही वो तो पान करने लग ही गया, प्रतीक्षा ही नहीं किया कि नमः पार्वती पते बोलेंगे, बोलेंगे प्रतीक्षा ही नहीं किया, आया आते ही पीने लग गया। तो सूर्य ने देखा ये तो जल्दीबाजी करने वाला असुर होता है, हैं?
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Om Namah Shivaya.

यदधिम सूत्रामण वरद वरद यानी हे वरदान देने वाले महाप्रभु, यानी किसी को ऐसा लगे कि परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें इतना सब कुछ पहले पढ़ना पड़ेगा। ये अतद व्यावृत्ति जहत अजहत लक्षणा, ये सब हमें मालूम हो तो ही वो परमात्मा की कृपा होती है। तो बोले नहीं, ऐसा कुछ भी आपके पास नहीं हो और फिर मेरे अस्थि होने में, मेरे आस्तिक्य में आपको श्रद्धा हो तो भी काम चल जाता है। आप कैसे हैं? आप वरद हैं, आप वर देने वाले हैं। अज्ञानी को के ऊपर भी आप कृपा करने वाले हैं। तो अभी से भक्त को निश्चिंत कर दिया जाता है कि अगर ज्ञान या अज्ञान कुछ भी हो, मैं वर देने के लिए उत्सुक रहता हूँ। किसके लिए? जो मेरे अस्तित्व में, सिर्फ मेरे अस्तित्व में मानने वाला होगा तो भी वो काफी है। आप कैसे हैं? तीनों भुवनों को जिसने दासी के जैसे वश किए हुए हैं, वो बाणासुर जो है, वो बाणासुर यानी यहां असुर की बात है, दानवों की बात है, और ये बाणासुर तीनों लोग दासियों के जैसे वश करने योग्य किसके कारण बना, किसके वर से बना? तो बोले आप महादेव के वर से ही, आशीर्वाद से ही इंद्र की समृद्धि भी उसके पास तुच्छ हो गई। ऐसे बाणासुर के ऊपर भी आप कृपा करने वाले हैं। तो यहाँ कहा है कि आपकी जो समृद्धि है, न कस्याप्युन्नत्य ही भवति शिरसह त्वयि अवनति, आपके आगे कोई भी मस्तक झुकाने वाला होगा, कोई भी जो मस्तक झुकाएगा उसकी उन्नति ही होती है। यहाँ ये जो श्लोक है, इसे शास्त्र की भाषा में अर्थवाद या स्तुति कहते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में जो बात की है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः प्रापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। तो यहाँ पाप का आचरण कौन करते हैं? तो असुर पाप का आचरण किए जाते हैं, करते देखे जाते हैं। दानव पाप का आचरण करते हैं। तो बोले हम अगर पाप का आचरण करने वाले हैं, या पहले जब अज्ञान था, जब पता नहीं था चित्त शुद्धि क्या होती है, जब हमें पता नहीं था कि राग द्वेष नहीं होने चाहिए, काम क्रोध लोभ मद मोह नहीं होने चाहिए, और तब जब हमने कर लिए वो गलत कर्म, तो अब उसका क्या होगा? मेरे जैसे को क्या आत्मज्ञान, आत्मलाभ या परमात्मा की प्राप्ति होगी या नहीं? तो यहाँ बाणासुर का दृष्टांत देते हैं कि बाणासुर यानी पापों का भी अधिपति, यानी मैक्सिमम जो पाप कर सके वो, मैक्सिमम काम कर सके, क्रोध कर सके, लोभ कर सके, मोह कर सके। ये अवधि है काम क्रोध लोभ मोह की, हम कहते हैं ना मर्यादा, हाइट ऑफ इट। तो यहाँ सब आसुरी प्रवृत्ति की जो हाइट है, जिससे आगे कोई आसुर बन ही नहीं सकता, बुरा कर ही नहीं सकता, बुरे कर्मों की अवधि जिसके पास समाप्त हो जाती है, ऐसे बाणासुर भी जब आपके शरण में आए, आपकी आराधना की, तब आपने उन्हें तीनों विश्व का आशीर्वाद दे दिया, तीनों विश्व का अधिपति बना दिया। हे करुणेश्वर, इसीलिए महादेव को भोले और शंकर इसीलिए कहते हैं कि कोई भी हो, देव या दानव, अगर दानव को भी आप इतनी समृद्धि दे सकते हैं, माफ कर सकते हैं उनके गुना, तो मैं तो आपके लिए, मैंने जो उल्लंघन किया है किसका? तो शिव निर्माल्य का जो मैंने उल्लंघन किया है, वो उल्लंघन हमेशा मेरे लिए, आपके पास मुझे माफी ही मिलनी चाहिए। अब यहाँ पुष्प दंतव जी कहना क्या चाहते हैं? शिव निर्माल्य का उल्लंघन करना यानी क्या? शिव निर्माल्य यानी शंकर परमात्मा का नाम लिया हुआ है और वो पुष्प चढ़ा है। हम क्या कहते हैं? त्रिदलम, त्रिगुणाकारम, बिल्व पत्र जब हम अर्पण करते हैं, तो बोले ये तीन दल है, ये मेरा स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है, ये अज्ञान शरीर है, ये तीनों अवस्थाएं हैं, ये तीनों त्रिपुटी है, हाँ, कर्म कर्ता और कर्म की जो प्रक्रिया चल रही है, ये सब कुछ जो जितनी तीन तीन से, देखे तीन से ही सब कुछ बनता है, माया का सत्व रजस और तमस ये तीन गुण है। तो जितनी ये त्रिगुणात्मिका माया से तीन तीन की त्रिपुटियां मेरे जीवन में है, वो मैं सब आपको अर्पण कर देता हूँ। त्रिदलम, त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्रम, त्रियायुधम, आप तीन नेत्र वाले हैं।
तीन आयुध रखने वाले हैं, त्रिजन्म पाप संहारम। मेरे तीन, ये तीन शरीरों से जितने जितने मेरे कर्म हुए हैं वो सबका पाप का संहरण करने वाले एक बिल्वम शिवार्पणम, ऐसे में एक बिली पत्र को अर्पण करता हूँ। अब बिली पत्र तो जड़ है, एक पत्ता है, उसके अंदर चेतनत्व कौन लाता है? जब ये शरीर मन बुद्धि का संघात जो हाथ में बिली पत्र लेता है वो उसे चेतनवंत कर रहा है और वो जड़ा रहा है। तो बिली पत्र अगर गिर गया, बिली पत्र का उल्लंघन किया, तो वो तो जड़ एक पत्ता है, उसका उल्लंघन क्यों, इतनी माफी, इतना स्तोत्र रचना क्यों पड़ा पुष्पदंत जी को? देखिए, ये बिली पत्र का उल्लंघन करना यानी जो कोई भी परमात्मा के शरण में गया हो, परमात्मा के शरण में गया हो यानी तीनों शरीर से परमात्मा के शरण में गया हो, जिसने अपने तीनों शरीर परमात्मा को अर्पण कर दिए है, जिसने अपनी तीनों वासनाएं परमात्मा को अर्पण कर दी है, तीनों वासनाएं, ये त्रिदलम में तीन वासना भी आ गई कि हे परमात्मा, मेरे तीन प्रकार की जो वासना है उसको इसको भी आप, तीसरा जो आपका ज्ञान का नेत्र है उससे आप भस्मीभूत कर दीजिए, मैं आपके पास खड़ा हूं। ये क्या आप एक्सरे करने जा रहे हैं? तो वो जो टेक्नीशियन होता है वो आपको क्या बोलते हैं कि भाई बी स्टडी, आप स्टेडी रहना, वहीं खड़े रहना, भागना नहीं, सांस लेने को भी ना बोलते हैं, हाँ सांस भी चढ़ा लेते हैं और बोलते हैं बी स्टेडी, और फिर वो एक्सरे जाता है। तो यहाँ भगवान के सामने रहना है तो थोड़ा मन की चंचलता जो है, शरीर की चंचलता जो है, ये दूर तो करनी पड़ेगी ना, तो ही कोई आपका अज्ञान दूर करेगा ना। तो ये स्थूल रेस डालने के लिए भी आपको रहना पड़ता है अचंचल, तो यहाँ तो ये बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। यहाँ स्टडी रहना यानी क्या कि मन जो है वो परमात्मा में वो सूरत बनाए रखनी, लगाए रखना। बैठ तो आप ज्यादा नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा कोई एक घंटा दो घंटा बैठ सकेंगे ना, शरीर की भी अपनी एक मर्यादा है, पर मन की कोई मर्यादा नहीं है। मन को तो आपको स्थिर बनाए ही रखना है, और इसीलिए ये सत्संग, श्रवण, भजन, कीर्तन, कोई भी तरीके से आप कोई प्रकृति को जो भी माफक आ जाए, ऐसी तरह वो परमात्मा का भाव जो है अपने भीतर बनाए रखिए। तो बोले कि हम बात कर रहे थे कि जो तीन शरीर से परमात्मा को अर्पित हो गया है, तीनों वासना परमात्मा को अर्पित हो गई है, कौन सी तीन वासना? तो बोले ऐषणा त्रय की बात करते हैं। जितने जितने विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो जितने विषय है उतनी सारी वासनाएं हैं। तो भाई इनको तीन हेडिंग में रखना है तो कैसे रखेंगे? तो बोले पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। पुत्र की इच्छा याने मेरा नाम रहे, संसार की इच्छा, लोकेषणा, लोकेषणा याने मेरी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा होने के लिए नॉट नेसेसरी कि आपको कोई बड़ा बनना पड़ेगा, कुछ शेठ बनना पड़ेगा, जरूरी नहीं। सबको प्रतिष्ठा की भूख होती है, कोई छोटा सा कार्यकर होगा उनको भी अपनी, सबकी अपनी अपनी स्टेटस, अपना अपना प्रतिष्ठा तो सबको है। तो ये प्रतिष्ठा के साथ जब अहंकार जुड़ जाता है तब वो ऐषणा बन जाता है। प्रतिष्ठा बुरी चीज नहीं है, प्रतिष्ठित तो हो, प्रतिष्ठा यानी कि हम सब प्रतिष्ठित है, ये धरा के ऊपर हम ये शरीर मन बुद्धि से प्रतिष्ठित है, कहीं कोई घर पे है, कोई बाहर है, प्रतिष्ठित तो कहीं ना कहीं तो है ही। अंत में कुछ भी आपके पास नहीं है तो परमात्मा के अंदर आप प्रतिष्ठित है पूरे के पूरे, पर मैं प्रतिष्ठित हूँ ऐसा वो प्रतिष्ठा के साथ मैं लग गया तो वो ऐषणा बन जाती है। हा? और वित्तेषणा, वित्तेषणा याने कर्म काम भोग की इच्छा, ये पंच विषय के भोग की इच्छा जो है, आसक्ति जो है, राग जो है, वो ऐषणा की बात करते हैं। तो तीनों ऐषणा से जो समर्पित हो गया है, तीनों त्रिपुटिया जिसके जीवन में परमात्मा को समर्पित हो गई है, उपासना, उपास्य और जो उपासक जो है, वो तीन प्रक्रिया, भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीनों प्रक्रिया से सब कुछ, प्रक्रिया कर्म करता और कर्म की जो प्रोसेस होती है, कर्म का जो भोग होता है, वो तीनों त्रिपुटिया परमात्मा को जब समर्पित कोई कर देता है, हाँ, उसके लिए कुछ भी अब करना बाकी नहीं है। हाँ, नाच्य कृत कृते न, देखिए
परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयात नत्स्य कृत कृतेन, अब किया नहीं किया वो व्यक्ति के लिए एक ही हो गया हो, ऐसा समर्पित व्यक्ति। हम अपने विषय में ही आएंगे कि ऐसा जो भी समर्पित व्यक्ति है जिसे अब कुछ नहीं करना है, कोई उपासना कोई भक्ति नहीं करनी, क्यों? क्योंकि पूरा समर्पण है। किसके साथ कोई भक्ति करेगा? भक्ति के लिए त्रिपुटी चाहिए, हाँ दूरी चाहिए, द्वैत चाहिए। यहाँ तो समर्पण यानी क्या कि समर्पित यानी मैं ही वो हूँ, चिदानंद रूप शिव केवलोहम तदेको अवशिष्ट शिव केवल। अवशिष्ट यानी तीनों शरीर अर्पण हो गए, काया वाचा मनसा सब त्रिपुटिया अर्पण हो गई, सब वासनाएं अर्पण हो गई, और जो फिर जो बच गया वो शिव है और वो मैं हूँ। कौन बच गया आप ही बताइए मुझे, कौन बच गया? सब वासनाएं आपने दे दी, शरीर दे दिया, हाँ शरीर यानी शरीर का जो देह भाव जो है, मैं ये शरीर हूँ ऐसा भाव आपने परमात्मा को अर्पण कर दिया। मैं ये सूक्ष्म शरीर, मैं ये मन हूँ, सुखी दुखी होने वाला हूँ, वासनाएं करने वाला हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, ऐसे जो भी विचार है वो आपने समर्पित कर दिए तो बचेगा क्या? क्योंकि शिव कौन है? तदेको अवशिष्ट शिव केवल हम, तो कौन बच जाता है? क्योंकि आपको भी अर्पण करना है, इसीलिए तो हम इकट्ठे हुए हैं कि अर्पण क्या करना है पता नहीं है। न स्नाने न दाने न प्राणायामम शते न वा, भाई नदी में जाके शरीर अर्पण कर दिया स्नान से वो बुरा नहीं है, चित्त शुद्धि का अवश्य साधन है पर अंतिम नहीं, दान शुद्धि का साधन है पर अंतिम नहीं, प्राणायाम साधन है पर अंतिम नहीं, तो क्या है? आत्मिक बोधे न बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। ये शांकर वेदांत सिद्धांत का यही प्रतिष्ठा है, आत्मीय के बोधे न बिना विमुक्ति। शंकराचार्य जी ने बता दिया ये सब कुछ कीजिए ना नहीं है पर अंतिम जो है वो आप जान लीजिए, तो तदेको अवशिष्ट अंत क्या है? आत्मीय के बोध, आत्मा की जीव ब्रह्म क्या ऐक्य जो है वही अंतिम है, वही चिर शाश्वत शांति का कारण है। और वो कैसा है? तो शास्त्र बताता है अवशिष्ट यानी अवशिष्ट यानी बाकी रहा हुआ। तो कौन सी प्रोसेस के बाद बाकी रहता है? आप कोई भी पांच छह चीज फैक्ट्री में डाल देते हैं, फैक्ट्री में पांच छह चीज डाल दी और एंड प्रोडक्ट बाहर आया। अब चीजें डाली है तो कुछ बाहर तो आएगा ही ना, नहीं तो कोई फैक्ट्री क्यों लगाएगा? हमारी फैक्ट्री कौन सी है? हम अर्पण करना ही सिखाते हैं, यहाँ से बोलते हैं भाई द्वैत को अर्पण कर दो, वासनाओं को अर्पण कर दो, शरीर मन बुद्धि के भाव को अर्पण कर दो, ये कर दो ये कर दो। अर्पण यानी ये परमात्मा रूपी जो बड़ी फैक्ट्री चल रही, बड़ी इंडस्ट्री चल रही है वहाँ हम अर्पण किए जाते हैं। कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाएगा हाँ, उसमें सब मशीन सब कुछ ले आएंगे, सब कुछ अटैचमेंट करेंगे और जो रॉ प्रोडक्ट है मटेरियल जो है वो डालेंगे और बाहर कुछ आएगा ही नहीं, तो एंड प्रोडक्ट ही नहीं आएगा। तो बोले ये तो हास्यास्पद बात है। तो क्या हमारी बात हास्यास्पद नहीं लगती? हम समर्पण करने के लिए तैयार है, समर्पण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा? क्या कुछ नहीं, उसकी फलश्रुति कुछ नहीं? तो बोले एंड में क्या है? अवशिष्ट जो बाकी रहेगा, ये सब अर्पण करने के बाद बाकी कौन रह जाता है? एंड रिजल्ट क्या है? मैं अवशिष्ट कौन रह जाता है? भाई मैं समर्पित करने वाला, अर्पण करने वाला तो बाकी रह ही जाता हूँ। तीनों शरीर के भाव अर्पण कर लिए पर अर्पण करने वाला जो है वो तो ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। जो अर्पण करता है उसका कभी भी अभाव या बाध नहीं हो सकता, वो तो रहता ही है। आपका जो अहम है, आपका जो मैं है, बिना अहंकार का कर्ता भाव, क्योंकि कर्ता भाव दे दिया है, मैं ये शरीर हूँ वो भाव दे दिया है, फिर भी कुछ रह जाता है। अर्पण करने वाला, बाध करने वाला, निरसन करने वाला रह जाता है। यही बात विवेक चूड़ामणि में भी आती है, इसीलिए प्रकरण ग्रंथ पढ़ने ही चाहिए। वहाँ भगवान शंकराचार्य को शिष्य पूछते हैं कि हे शंकराचार्य जी, कहते हैं कि देखिए आपके पंच कोश है, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, ये जो कोश है, कोश याने मैं ये हूँ वो भाव, वो आवरण कर देता है मेरी बुद्धि को, सूक्ष्म बुद्धि को, वो कोश कहलाते हैं भाई, उनको आप एक एक करके उसका तादाद में तोड़िए, निकाल लीजिए। तो शिष्य कहते हैं कि अरे भगवान, ये सब कोष का मैंने निरसन तो किया, मैंने उसका निरोध तो कर दिया, अब तो शून्य ही बचा है। तो बोले शून्य नहीं बचा है, तू तो बचा है ना बात करने वाला,
वही तेरा स्वात्मा है, वही तेरा सच्चा स्वरूप है। तो हमारी बात कहां से निकली थी कि ऐसा जिसने समर्पण कर लिया है और उसने इतने हजारों बिली पत्र में से कोई एक समर्पण करने वाले का बिली पत्र अगर आ गया तो हमें नुकसान है। कहने का तात्पर्य पुष्पदंत जी को इतनी माफी क्यों मांगनी पड़ी, क्योंकि हमें क्या समझना है, बिली पत्र के ऊपर से जाना, इतनी ही बात समझानी है? तो बोले नहीं, जिस व्यक्ति ने ऐसा समर्पण कर लिया है वो व्यक्ति के बारे में थोड़ा भी आपने गलत सोचा तो समझ लेना कि आप शिव निर्मल्य के ऊपर से गए हैं। क्योंकि पुष्पदंत जी क्या थे, मानसिक रूप से गए हैं ना, वो तो अंतर ध्यान हो गए थे, वो सूक्ष्म रूप से ऊपर गए थे ना। तो यानी जिसने ये कर लिया है उसके बारे में एक भी बात गलत सोच दी तो समझना आप शिव निर्मल्य के ऊपर से गए हैं। उसके लिए गलत किया तो शिव निर्मल्य के ऊपर से गए हैं। हाँ, गलत सोचा, कहने की तो बात बहुत ही दूर हो गई। इसलिए कल भी मैंने ये बात के ऊपर बहुत आपका ध्यान लाने की कोशिश की थी कि कभी भी आपको पता नहीं है कौन वहां पहुंच गया है, या कोई सिम्टम आपके ऊपर, कई लोग होंगे ज्ञानी, कई पहुंच गए होंगे, उसकी कोई निशानी नहीं है, ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, इनफैक्ट ऐसे रहते हैं कि आपको पता ही नहीं लगे कि इसको कैसे ज्ञान हो सकता है। हाँ, तो ज्ञानी जन गूढ़ गुह्य वर्तन कर रहे हैं, जो भी कोई है, नॉट नेसेसरी कि यही कपड़े में होने चाहिए, आप गृहस्थी भी हो सकते हैं, पर किसी का भी, इसीलिए किसी का भी द्वेष नहीं करना है, वो इस कारण क्योंकि वो पहुंच गया होगा, वो परमात्मा को पा लिया होगा, तो आपने मान लो कि शिव निर्मल्य का उल्लंघन किया है। इसीलिए किसी से भी राग नहीं करना है, किसी से भी द्वेष नहीं करना है, इसीलिए किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करता है। अनजाने में भी वो जो व्यक्ति है अभी अभी क्रोध कर रहा था और नेक्स्ट मोमेंट ही उसको वैराग्य आ गया और समर्पित हो गए तो हमारा क्या होगा? और इसीलिए अगर हम अपने आप को साधक कहते हैं, शिष्य कहते हैं, तो ये बात साधक को बहुत ही ध्यान रखनी जरूरी है। तो इसीलिए बाणासुर, उनको डर लग गया पुष्पदंत जी को कि भाई मैंने ये शिव निर्मल्य का उल्लंघन किया है, यानी ये जो राजा जो थे, काशी नरेश जो थे, वो तो साक्षात परब्रह्म का साक्षात्कार किए हुए थे और उनकी चीज को मैंने छुआ, उनकी चीज की मैंने चोरी की। ये क्या बता रहे हैं कि कभी ये ज्ञान भी जो प्राप्त करना है ना, कभी भी चोरी से प्राप्त नहीं करना ना। कोई भी आप सामने आके बैठिए, प्राप्त कीजिए, कभी भी चोरी छुपे ये प्राप्त करने की चीज नहीं है। चोरी छुपे कौन प्राप्त करता है? भाई जिसका अहंकार झुकता नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा और सामने आके बैठूं, मैं सुनूं, मेरा समाज क्या कहेगा कि ये इतना बड़ा है और उसको किसी के पास जाना पड़ता है, किसी के चरण में बैठना पड़ता है, मेरा अहंकार नहीं मानता है, तो ऐसी चोरी भी नहीं करनी है। बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म बातें श्री पुष्पदंत जी हमें बताना चाहते हैं। श्लोक नंबर 14 और 15 एक साथ।

0: ज्ञानमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिशुपाध्यः परिभवः।
1: यहाँ अभी श्लोक नंबर 14, जगत रक्षा के लिए परमात्मा ने, शिव ने जो विषपान किया है उसकी बात कर रहे हैं। ये पूरे समष्टि की बात है, ये विषपान क्या है, क्यों किया, इसकी बात थोड़ी कर रहे हैं श्री पुष्पदंत जी। हे तीन नेत्र वाले देव और दानवों ने जब समुद्र मंथन किया, तब जो जहर है, जो विष है, वो अचानक प्रकट हुआ। देखिए मंथन क्यों किया, समुद्र मंथन जब शुरू किया तब इच्छा किसकी थी कि भाई उसके भीतर जो भी संपत्ति है, समृद्धि है, सूक्ष्म और स्थूल, वो हमें प्राप्त हो। तो ये पहला ही वाक्य जो है ये हमें सिखा रहा है कि जहां आपको लगे कि संपत्ति की, समृद्धि की पॉसिबिलिटी है और हम संसार में उसी के लिए प्रवेश कर रहे हैं, तो मान लेना कि विष सबसे पहले निकलेगा ये संसार में। ये संसार का, ये संसार वृक्ष जो है, ये संसार वृक्ष का दर्शन किया हुआ है। तो हम अगर सोचते होंगे कि कुछ संसार में और जाना है, और मंथन करना है, और कुछ करना है, और कुछ डेवलपमेंट करना है, ज्यादा करना है, बढ़ाना है, तो समझ लेना विष की तैयारी रखना। ये पहले से पता होता है ना, आप संसार में जाइए, हर्ज नहीं है, पर इतना पता रखिए कि विष निकलेगा, फिर उसका तिरस्कार नहीं कीजिए। हाँ, तो ये बता रहे हैं। और नहीं जाना तो सबसे अच्छा है, और अगर प्रवेश हो ही गया है तो समझ लेना विष का आना स्वाभाविक है। उसके साथ अब सुलह करके, उसके साथ द्वेष करके या राग करके कोई भी प्रकार से उसके भीतर, उसके पीछे अपनी शक्ति का ह्रास मत करना। विष निकलना स्वाभाविक है, यानी विष की अब कंप्लेन भी मत करना, डोंट कंप्लेन, शिकायत भी मत करना। अरे भाई देखो मेरा संसार अभी ऐसा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ द्वेष किया, ये किया, वो किया, पता लग गया ना क्या है, विष निकल नहीं, और सबसे पहला निकला। हाँ, पहले ही मुंह कड़वा हो गया, पहला ही ग्रास चटनी समझ के खाया, पर करेले की या नीम की चटनी थी, क्या हुआ, हरा समझ के खाया, थाली में रखा, हरा समझ के खाया और नीम निकला पहले ही ग्रास में, तो पूरा खाना क्या है, पूरा खाना बिगड़ गया। यहाँ शिकायत अभी मत करना, संसार का मंथन किया है, विषयों का मंथन किया है, तो जहर निकलना स्वाभाविक है, शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कहा है। अभी आगे कहते हैं ब्रह्मांड का ये जो विष निकला वो पूरे ब्रह्मांड का नाश करने के लिए समर्थ था। तो संसार में जब हम बात कर रहे हैं, आप कहेंगे कि संसार के साथ आप ये विष का, विष बता रहे हैं सिंबॉलिक, तो ये कैसे हो सकता है, हमारा जो विष है वो कैसे हमारे छोटे से व्यष्टि के संसार का नाश कर सकता है। तो बोले ये विष का रूप कैसा है, विष का स्वभाव कैसा है, जान लीजिए, ये विष का स्वभाव विचार है। वी पैसे समझ लीजिए, वी यानि विष, वी यानि विचार, ये विचार बन के आ रहा है विष। कैसे विचार बन के आ गया, विचार बन के दुर्योधन के मन में आ गया, हाँ, रत्ती भर भी जगह नहीं दूंगा, ये विष आ गया, समुद्र में गए, संसार समुद्र में, और विष आ गया कि पांडवों को जगह नहीं दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी के मन में विष आ गया कि वो पद्मिनी के दर्शन करने ही है, देखना ही है, ये चाहिए। तो ये विष विचार बन के आता है, कौन से विचार बन के, जिद के विचार बन के आता है, अहंकार के विचार बन के आता है कि मुझे ये चाहिए ही, ये मुझे पाना ही चाहिए, मैं इसके लिए योग्य हूँ, और ये मुझे जब तक नहीं मिले तब तक ये विष मैं फैलाता ही रहूंगा। ये हमारा जो विचार रूपी विष है, हमारे पूरे संसार, हमारा पूरे फैमिली को, सोसाइटी को कलुषित करता रहता है। हमारा एक विचार, एक विचार आप निकाल लो तो क्या होगा, आप भी निर्विष हो जाएंगे, आप भी शुद्ध हो जाएंगे, और आपके जो आजू बाजू की जो प्रकृति है, स्थूल प्रकृति, हमारे घर की स्थूल प्रकृति भी हमारे विष से प्रभावित होती है, ये जरा ध्यान रखना। हाँ, चेतन व्यक्ति ये शरीर मन बुद्धि का संगात ही प्रभावित नहीं होता, सब कुछ प्रभावित होता है। नहीं तो पवित्र अपवित्र की बात ही हमारा शास्त्र नहीं करता, आंतर शुद्धि और बाह्य शुद्धि की बात ही नहीं करता। कोई भी जगह का बैठ जाओ, कोई भी जगह का खा लो, कुछ भी कर लो, क्यों हम ब्रह्मार्पणम कर रहे हैं? ये शुद्धि है। क्यों हम नहाते हैं? ये शुद्धि है। क्यों जगह साफ रखते हैं? शुद्धि है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कोई विश्व वाला कहां आके बैठ गया होगा, उसने क्या विचार किया होगा, सूक्ष्म रूपेण उसका जो संस्कार है यहां वहां भटकते होंगे। इसके लिए डर से सब शुद्धि के लिए भी पूरा जीवन डालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, सब में एक्सट्रीम ले लेते हैं। शुद्धि यानी कुछ मर्यादित शुद्धि रखिए और वो सब करके ये जो प्राप्त करना है, जो श्रवण है, श्रवण के लिए आपकी जगह बना लीजिए, फिर उसके पीछे ही नहीं पड़ना है। ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, एकदम ही समभाव से ये सब साधनाएं की जाती है। तो विष के बारे में अब सोच लीजिए कि विष की बात पुष्पदंत ने की, विष यानी विचार। तो अभी हम जो साधक है उसे बराबर सतर्क रहना है कि एक भी विष का विचार नहीं आए। भाई विष का विचार यानी राग का विचार, विष का विचार यानी द्वेष का विचार, काम का विचार, क्रोध का विचार, शरीर मन बुद्धि के अहम भाव का विचार जो है ये विष है, ये समझ लेना। ये विचार आए, आने के बाद पता चलता है कि विचार आ गया, अब उसके ऊपर आप कर्म नहीं कीजिए। और इसीलिए परमात्मा कृष्ण परमात्मा ने बराबर कह दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा फलेषु कदाचन की बात को वहां ही रुकवा दीजिए। हमारे लिए काम का क्या आ गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म करने में परमात्मा इतने कृपालु है कि कर्म करने में हमें स्वतंत्रता दे दी है, नहीं तो क्या होता। ये विष के विचार तो अभी भी आ रहे हैं, ये पल में भी आ गए हैं, अभी यहां बैठे बैठे भी छू गई है वो हवा, पर उसके ऊपर आपने कर्म नहीं किया। आप यहां बैठे रहे, घर जाके सोचूंगा, आप यहां बैठे रहे, तो आप यहां बैठे किस प्रकार रहे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, परमात्मा ने अधिकार दिया है कि कर्म अभी करना या नहीं करना, उठ जाऊं और विष का जो विचार हुआ उसके ऊपर ध्यान दूं या प्रवचन सुनने के बाद करूं। हाँ, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका उपयोग और दुरुपयोग हमारे हाथ में है, इसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। तो याद रखना ये विष रूपी विचार यानी ही विष, ध्यान रखना ये विचार कौन से है। आपके विचार के साक्षी बनो, उसके दृष्टा बनो, उसको देखते रहो। और विष है, संसार है, खुद ने खड़ा किया है, तो शिकायत मत कीजिए, यू हैव नो राइट टू कंप्लेन। आगे कहते हैं कि ये तो ब्रह्मांड का नाश करने वाला है ये विष। ये मेरे मन में जो विष आया वो मैं पूरा ब्रह्मांड लेके घूम रही हूं ना, मैं याने आप सब, ये पूरा शरीर मन बुद्धि है वो क्या है, माइक्रोकॉस्म बता रहे हैं ना, इसमें आकाश वायु तेज जल पृथ्वी है क्या? हाँ या ना, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार है, हाँ। पांच तन मात्राएं है, हाँ। महत्व है, हाँ। अहंकार है, हाँ। अहम है, हाँ। और उसे जानने वाला पुरुष है कि नहीं? हाँ। तो आप कौन हो गए, पूरा ब्रह्मांड हो गए ना। तो एक विचार पूरे ब्रह्मांड को बिगाड़ता है, इसलिए शंकर भगवान ने क्या किया, पी गए आपके विश्व वाले विचार को, पी जाना, मुख में से बाहर नहीं निकालना, यही समझना है। कोई आप्तजन के पास भी बाहर नहीं निकालना, बाहर ही नहीं निकालना है।
2: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta 15. Thank you.

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசிபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹாவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோர்சஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. ஃபிலாசபிக்கல் டிஸ்கோர்சஸ் அண்ட் பெரிய புராணம் லெக்சர்ஸ் இன் தமிழ் will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Bhakti Shakti Samita Vasal Mi Mata Vishni Mai Veno Aap Sarvabandh. Taittiriya Aranyak Ki Taittiriya Upanishad Ke Madhyam Se शांति पाठ को लेकर के ऋषि प्रार्थना की चर्चा की जा रही है, जिसके अंतर्गत क्रम से उन देव विशेषों के जो एक एक विशिष्ट गुण हैं, उन गुणों को लेकर के ऋषि प्रार्थना करता है, हमें भी उन गुणों से संपन्न करें जिससे हमारे दुख की प्रतिबंधकों की निवृत्ति हो और हमें सुख की प्राप्ति हो, हमारा सद्मार्ग बने और निर्विघ्न पूर्वक हमारे मार्ग का मार्गन होते हुए हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, ऐसी ऋषि की अभिकांक्षा है। उसको लेकर के ही ऋषि यहां पर प्रार्थना कर रहा है। तो आप जानते हैं, प्रवचन शब्द का अर्थ ही होता है अर्थानुसंधान पूर्वक कथनम इति प्रवचनम। अर्थ का अनुसंधान करते हुए जो कहा जाता है उसी का नाम है प्रवचन। ऐसा नहीं हम जो है उस पद को न देख करके, उसके अर्थ को न देख करके जो कुछ भी कहें वह प्रवचन हो, उसे प्रवचन नहीं कहते। प्रवचन वही है जो पद के अर्थ का अनुसंधान करते हुए, उसकी खोज करते हुए और जो कहा जाता है उसी का नाम होता है प्रवचन। तो यहां पर भी वो श्रृंखला चल रही है जिसमें ऋषि प्रार्थना करते हुए संकेत किया, क्रम से जो है पहले सन्नो मित्र शब्द से कहा, फिर वरुण शब्द से कहा, फिर अर्यमा शब्द से कहा, इंद्र शब्द से चर्चा की और बृहस्पति शब्द से चर्चा की। इनका क्या अभिप्राय है? तो सीधा सा तात्पर्य है, क्योंकि उपनिषद जब प्रारंभ होने जा रही है तो सबसे पहले इसमें शिक्षावल्ली की चर्चा, और शिक्षा का मतलब होता है सीखना, और जो सीखना है वो भी क्या है? तो यहां पर शिक्षा वल्ली में उपासना विषयक चर्चा। उपासना का तात्पर्य क्या होता है? तो उपासना का तात्पर्य है अंतःकरण की शुद्धता, अर्थात जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो हमारे में पात्रता आती है, योग्यता आती है, हम अधिकारी बनते हैं, और जब अधिकारी बनते योग्यता आती है तब जो हमारे में अतृप्ति है, अपूर्ति है, उसे हम पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, तब हम उस प्रयास में सफल होते हैं, तब हमारा मार्ग मार्गित होते हुए हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो आगे जो है ब्रह्मविद आपनोति ब्रह्म पर ब्रह्म करके संकेत करेंगे, लेकिन उससे पहले शिक्षावल्ली में जाना है तो उसके लिए उपासना की आवश्यकता, और उपासना करने के लिए भी अंतःकरण की शुद्धि भी बहुत जरूरी। इसलिए उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए ही ऋषि प्रार्थना करते हुए कहता है कि पहले हमारे में वह मित्रता भाव, प्रेम भाव अर्थात ईर्षा राग द्वेष आदि है, इनकी निवृत्ति हो, शवार आदि आए, इसलिए मित्र शब्द से चर्चा की। और उसके बाद जब ये स्थिति हमारे अंदर आ जाए तो हमें वर्ण क्या करना है, चयन क्या करना है, किस चीज को हमें चुनना है, किसे हमें अपना लक्ष्य बनाना है, कौन हमारा प्राप्तव्य है, इसको लेकर के वर्ण शब्द का संकेत किया, वो हमें सामर्थ्य दे। और क्रम से जो है अर्यमा शब्द से भी संकेत कर दिया, ये सब कब होगा तो हमारे मन के अंदर, हमारे अंतःकरण के अंदर वो सामर्थ्य हो, वो शक्ति हो अर्थात वो योग्यता हो तो वो अर्यमा प्रदान करेगा। अर्थात निश्चय करना, संकल्प में दृढ़ता होना, ये अर्यमा से गुण मांगा और उस गुण को मांग तो लिया लेकिन उसका बल हमारे अंदर है, उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर है, हम उसे टिका सकेंगे या उस पर दृढ़ रह सकेंगे नहीं, तो इसके लिए बल की याचना करते हुए इंद्र शब्द को कहा, सन्नो इंद्रा करके। और ये जब सब कर दिया, जब इतनी स्थिति हो गई तब कहने लगे अब हमें वह ज्ञान चाहिए। उस ज्ञान का अधिष्ठाता बृहस्पति को कहा, जो श्रेष्ठ ज्ञान है, कौन सा ज्ञान, तो संकेत कर दिया जो हमारे लक्ष्य को लक्षित कराने वाला है, मनुष्य जन्म को सार्थकत्व प्रदान करने वाला है, ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान को देने वाले बृहस्पति को लेकर के प्रार्थना की। और ये सब चर्चा करने के बाद तब जो है आगे संकेत किया, वो ऐसा ज्ञान कौन है जिसे प्राप्त करना, और वो भी ज्ञान हमारे में कैसे आएगा, तब उसकी तरफ संकेत किया, किसका ज्ञान करना है, तो संकेत कर दिया विष्णु रुरुक क्रम, सन्नो विष्णु रुरुक क्रम, जो सर्वव्यापक शक्ति है, जो परिपूर्ण शक्ति है, ऐसे उस परिपूर्ण शक्ति का ही हमें ज्ञान प्राप्त करना। परिपूर्ण है, व्यापक है, क्या तात्पर्य, तो इसके लिए संकेत कर दिया उरुक क्रम, जिसका एक महान क्रम है, जिसकी एक महान श्रृंखला है, महान इसलिए है कि उस श्रृंखला को कोई तोड़ सकता नहीं, उस क्रम को कोई जो है विघटित कर सकता नहीं, ऐसे क्रम वाला जो विष्णु है, जो व्यापक शक्ति है, ऐसी उस व्यापक शक्ति को ही हमें प्राप्त करना। और जब वो व्यापक शक्ति आ जाएगी तो हमारी भी जो मार्ग के मार्गन करने की श्रृंखला है वो टूटेगी नहीं, और वो टूटेगी नहीं तो मार्ग हमें कहां पहुंचाएगा, लक्ष्य तक पहुंचा देगा। और जब लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तो जिस सुख की हम याचना करते हैं वो सुख हमें प्राप्त हो जाए। एक और विलक्षण बात आती है, संसार के अंतर्गत अभी तक प्राचीन काल से लेकर के आज तक कोई ऐसा प्राणी नहीं मिला जिसने दुख की याचना की हो। सब किसकी याचना करते हैं, सुख की याचना करते हैं, और प्रयत्न भी किसका करते हैं, सुख का ही प्रयत्न करते हैं। संसार के अंतर्गत आज तक सृष्टि के आज से लेकर के किसी ने भी दुख की याचना, दुख की कामना, दुख की इच्छा नहीं की और उसके लिए प्रयत्न भी नहीं किया। सब सुख मांगते हैं और सुख के लिए प्रयत्न करते, लेकिन बड़ी विलक्षण स्थिति तो ये है, हम चाहते भी नहीं और प्रयत्न भी नहीं करते, और जिसके लिए प्रयत्न करते वो कभी आ जाता कभी नहीं आता, और जिसके लिए प्रयत्न नहीं करते, कामना भी नहीं करते, वो आ जाता। दुख कोई चाहता नहीं, दुख की कोई याचना नहीं करता, और फिर भी दुख आ जाता है। विचार करो, अब ये कुंती आदि का उदाहरण लो तो कुंती का लक्ष्य भी क्या था, अपुनर्भव दर्शनम, पुनः संसार हमें देखना ही नहीं पड़े, संसार ही नहीं देखना पड़ेगा तो फिर जो है दुखी कहां से होगा, तो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति थी उसकी, उसकी अभिप्सा क्या थी, आत्यंतिक दुख। तो अब जो है हम दुख नहीं चाहते लेकिन फिर भी दुख आ जाता, और प्रयत्न भी नहीं करते हैं फिर भी आ जाता, ये विलक्षणता। और सुख चाहते हैं, सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी हम अतृप्त रह जाते, फिर भी पूरा सुख हमें मिल पाता नहीं, जैसा हम चाहते जैसा प्रयत्न करते वैसा मिल पाता नहीं, ये विलक्षणता है। लेकिन अब इस विषय पर चर्चा न करते हुए, तो इसलिए हम जिसे नहीं चाहते और वो आ जाता है, तो इसका मतलब है उसके अंदर अधिक बल है ना, वो अधिक शक्तिशाली है। तो इसलिए उस दुख की निवृत्ति के लिए हम किसी न किसी का सहारा चाहते हैं। और सहारा चाहना ही है क्या, उपासना, किसी बलवान के समीप में रहना। तो इसलिए देवताओं की उपासना और उनके सहयोग से ही, उनकी समीपता से ही हम पूर्ण सुख को प्राप्त कर सकते। तो ऐसा पूर्ण जो होगा वही पूर्ण सुख दिलवा सकेगा, तो उसकी समीपता होगी। तो वो कौन है, उसी को यहां संकेत किया कि वह विष्णु जो सर्वत्र व्याप्त शक्ति है। विष्णु तो केवल संज्ञा उसे समझने के लिए दे दी, मूल में है कि जो व्याप्त शक्ति, उस व्याप्त शक्ति को ही नाना रूपों में कहा, कहीं ब्रह्म शब्द से कहा, कहीं और रूप से कहा। तो यहां पर जो है समझने के लिए उसे कह दिया गया विष्णु। वो विष्णु क्या करे, वो व्यापक शक्ति क्या करे, उसका स्मरण किया। कहने लगे वो हमारे लिए सुख प्रदान करे, हमारे दुख की निवृत्ति करे, हमारे दुख का शमन करे, अर्थात हमें तृप्त करे, हमारे हमको पूर्ण करे। हमारे अंदर अभी क्या है, अपूर्णता है, तो अपूर्णता को जो है पूर्ण कर दे, हमारी अपूर्ति को है पूर्ण कर दे। तो ऐसा कौन है, तो कहने लगे जो सर्वशक्तिमान होगा, सर्वव्यापक होगा, वही कर सकेगा। तो ऐसे उस विष्णु से प्रार्थना करते और उसकी वैशिष्टता का, हमें जिससे कुछ चाहना होता है तो क्या करते, उसकी प्रशंसा करते, क्योंकि बगैर प्रशंसा करे वो देगा नहीं। तो प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारी जो शक्ति है वो कैसी है, तुम्हारा जो स्वभाव है वो कैसा है, का सामान्य नहीं, महान गुरु, महान क्रम है, अर्थात तुम्हारे स्वभाव में कहीं भी अवरोध नहीं, महान स्वभाव है, तुम्हारे को कोई प्रतिबंधित कर सकता नहीं, तुम्हारे स्वभाव में कोई विघ्न डाल सकता नहीं, ये संकेत किया। तो अब जो है ऐसे उस विष्णु से प्रार्थना करते हुए संकेत किया कि महान है व्यवस्था जिसकी, महान है श्रृंखला क्रम जिसका। क्या व्यवस्था है, तो इसको लेके थोड़ी चर्चा प्रारंभ की थी, वेद के उस मंत्र को उठा करके, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत एक मंत्र आया, संकेत किया त्वा मिमा औषधि विश्वा तुम अपो अजनयस त्वंगाह तुम आतंथोर हंतरिक्षम तुम ज्योतिषा वितमो ववर्थ। ये भी उसकी प्रशंसा है। यहां पर उसका नाम रख दिया सोम। क्या नाम रखा, सोम। अब सोम कह करके क्या कह रहे, तुम सोम रूप हो, और सोम रूप हो तो पहले तो व्यापक शक्ति कह दी, अब सोम रूप ही क्यों मात्र बतला रहे। कहा ये सोम भी अब व्यापक नहीं है, व्याप्य नहीं, ये भी क्या है, व्यापक। कहा ये व्यापक कैसे, तो इसको सुन। तब कहने लगे कि सोम होकर के तुम्हें समस्त औषधियों को, वनस्पतियों को पूरित करते हो, पुष्ट करते हो, गुणवान करते हो। और कहने लगे इतना ही नहीं, जो जल जीवन देने वाली शक्ति है, ऐसे उस जल का